0: બેન્ડ મનુ ગીતતા એશો પૂરું અને ગીત બાત એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણે માન સ્વાગત કરો હો અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે બેન્ડ મનુ અમે આપને ગીત તકે પહેલે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે જૈવિક ખેતીને માધ્યમ થકી હરતે આપણે આપણી ખાદ્ય સુરક્ષાને સુનિશ્ચિત કરી શકો. તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી સોહનજી. તો સૌ થકી પહેલા આપણે હમરી લણાની વાત મોરે કરા આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: ધન્યવાદ
0: સર. જૈસા કી આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે વાતચીત કા વિષય હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો જૈવિક ખેતી કે માધ્યમ સે અપની ખાદ્ય સુરક્ષા કો કૈસે સુનિશ્ચિત કર સકતે હૈ.
1: બિલકુલ, જૈસા કી આપને શરૂઆત મેં હી इस चीज को
2: आता है
1: और फिर वो जो गोबर बनाता है तो वो खाद के रूप में हम
0: काम में लेते हैं। बिल्कुल.
1: इसके अलावा जो मूत्र विसर्जन जो पशु करते हैं उनका उपयोग भी हम खाद बनाने में या दवाइयां बनाने में करते हैं, या एक तरह से वातावरण से हम अलग अलग तरीकों से बिना रासायनिक का उपयोग करके जो भी खेती हम करते हैं या खेती करने के लिए जो सहायक तरीके हैं वो तरीके हम उपयोग में लेते हैं, तो वो सारे ही जैविक खेती के तरीके हैं, या उनको कहते हैं कि ये जैविक खेती हम कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी रसायन का उपयोग नहीं होता है।
0: बिल्कुल.
1: अब एक उदाहरण के तौर पे हम इसको समझते हैं कि जैविक खेती के में जैसे कि मान लो कि उसके लिए उपयोगी क्या है. उपयोगी पहले तो जरूरत, खेती की जरूरत क्या है, हमको खाद चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: बीज चाहिए, पानी चाहिए और हमारे जो भी कीट या रोग है उनका प्रबंधन चाहिए.
0: बिल्कुल,
1: है ना, तो ये हमको चाहिए. दूसरा जो है उसमें काम करने के लिए हमको बाहरी मशीनों का भी प्रयोग कम से कम होना चाहिए.
0: जी जी.
1: इसके लिए तो ये हमको मुख्य मुख्य चीजें
0: ध्यान में रखने की जरूरत है.
1: अब खाद के लिए हमको जो है पशु का खाद है वो उसका हम उपयोग करेंगे. पशु का खाद को बेहतर बनाने के लिए जो तरीके हैं वो हमको उपयोग करने चाहिए, जैसे जैविक तरीके हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट है या हमारा उकेड़ा खाद है उसको सड़ा के सीधे तौर पे हमको डायरेक्ट जो है वो हमको खेत में नहीं डालना है, उसको एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद में अगर हम उसको खेत में डालेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करेगा.
0: बिल्कुल.
1: तो वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, या उसकी और अगर हम उसमें जाएंगे आगे तो जैसे कि जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, तो इस प्रकार की बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं तो उनसे अच्छा हम खाद बना सकते हैं. इसके साथ ही देखेंगे हम तो बीज.
0: बिल्कुल.
1: तो बीज भी हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा बीज का उपयोग कर रहे हैं. बीज का उपयोग हमको हमारे यहाँ की परंपरागत बीज जो है उनका उपयोग हमको करना चाहिए उसमें.
0: जी जी.
1: और इसके पीछे क्या है कि परंपरागत जो फसलें हैं हमारी वो हमारी वर्षा के हिसाब से, हमारा वातावरण के हिसाब से वो फसलें यहाँ पे जो है पुरानी समय से चलती आ रही है और यहाँ होती आ रही है, तो हमको उनको प्राथमिकता देनी चाहिए. अब उनको प्राथमिकता इसीलिए देनी चाहिए क्योंकि आपने एक बात करी थी खाद्य सुरक्षा.
0: जी जी.
1: तो खाद्य सुरक्षा के लिए परंपरागत जो फसलें हैं हमारी वो बहुत ज्यादा जरूरी है.
0: जी जी.
1: जो हमारी परंपरागत खेती है वो खाद्य सुरक्षा को लेके ही होती थी, क्योंकि उस समय जो है फसलों का व्यापार नहीं होता था. जो खेती होती थी वो खाने के लिए होती थी.
0: बिल्कुल.
1: है ना, परंपरागत खेती जो है उसका अगर हम बहुत सारे उदाहरण हैं, घर के पास में आपका सब्जियां उगाना, आसपास में छोटे से टुकड़े में, है ना, जिसको आजकल हम बहुत सारे नाम देते हैं, न्यूट्रिशन गार्डन, किचन गार्डन, पोषण बगिया.
0: बिल्कुल.
1: तो वो सारा वही जो परंपरागत तरीके से हमारे यहाँ होता आया है और वो खाद्य सुरक्षा के लिए ही हम करते थे ताकि हमारी बाजारी निर्भरता
0: कम हो।
1: इसके अलावा जो फसलें हम करते थे, क्योंकि जो हमारी फसलें होती थी, जो हम खाना खा रहे थे वही हमारे शरीर को मजबूत बनाती थी और वही हमको ऐसा सक्षम बनाती थी ताकि हम दिन भर परिश्रम कर सके, कार्य कर सके. लेकिन धीरे धीरे धीरे बाजारीकरण आने से और बाहर का बीज आने से जो खेतीबाड़ी है उसको पोषण की दृष्टि से नहीं देखते हुए व्यापार की दृष्टि से देखने लगे, और व्यापार की दृष्टि से जब देखने लगे तब उसमें जो है बाजारी चीजें आने लगी, ज्यादा उत्पादन के लिए हाइब्रिड बीज लाने लगे।
0: बिल्कुल।
1: और अगर रोग वहां होते थे तो उन्होंने जो है कीटनाशी का उपयोग करना चालू कर दिया। और इसके अलावा भी जैसे कि अब ज्यादा खेती करने लगे, ज्यादा उत्पादन लेने लगे, तो जैव प्रक्रिया का खाद है वो उनके लिए पूरा नहीं हो पा रहा
0: जी जी।
1: तो फिर वो रसायन खाद का उपयोग करने लगे। तो धीरे धीरे ये सारी जो रसायन है वो जमीन के अंदर गई और जमीन की जो जैव प्रक्रियाएं जो चलती है उनको उन्होंने डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब होने से जो है वो जैव प्रक्रिया की जो रफ्तार है धीरे धीरे कम हो गई। तो जमीनें अनुर्वरक होने लगी, तो धीरे धीरे जमीनें अनुर्वरक हुई तो इनकी जो मात्रा है रसायन की वो किसान बढ़ाता गया। और धीरे धीरे अब आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जो है जमीन की उर्वरकता शक्ति है वो खत्म हो सकती है, तो इसके लिए हमको वापिस से उसको जैविक प्रक्रियाओं को अपनाना होगा और जैविक खेती चालू करनी होगी। साथ ही हमको खेती में ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर किसान है वो जो खाता है जो खाने के लिए जरूरत है, और उसको चाहे अनाज हो, सब्जियां हो, दालें हो, फल हो, उसकी जितनी जरूरतें हो वो उसके खेती में निरंतर आए, उसको कम से कम उसके घर के लिए उसको बाहर से नहीं लाना पड़े और इसके लिए वो खेती करे, तो इसी को ही उसकी जो खाद्य सुरक्षा है वो करेंगे। अब अनाज में भी देखेंगे कि हमको सिर्फ एक अनाज नहीं, जैसे कि अनाज में भी अलग अलग से, जैसे मान लो कि धीरे धीरे हम देखते हैं तो पहले हमारे यहाँ पे जैसे कि मक्की के साथ ज्वार बाजरा है ना, और छोटे अनाज में जो रागी कूरी बट्टी माल कांगड़ी कोदरा छीणा बहुत सारे हमारे पास अनाज थे। आज अगर हम किसान के वहां जाके देखते हैं तो हमको अनाज के रूप में क्या मिलेगा, या तो मक्की मिलेगी या गेहूं मिलेगा, इसके अलावा दूसरा अनाज उसके पास नहीं है। एक तरह से धीरे धीरे ये आ जाएगा कि ये सारे जो अनाज है वो विलुप्त तो होते जाएंगे। तो हमको जरूरत है वापिस से पहचानने की कि हमारे अनाज कौन कौन से हैं और उनको हम पुनर्जीवित करें, क्योंकि हर अनाज का अपना अलग गुण है और अलग पौष्टिकता है। इसीलिए पुराने जमाने में जो है 7 दिन का सप्तक होता था और 7 ही दिन बदल बदल के रोटी बनती थी। आज ज्वार की बन गई, कल बाजरे की बन गई, कल कांगड़ी की बनी, परसों मक्की की बनी, फिर गेहूं की बनी, तो उससे मनुष्य कम बीमार पड़ता था, उसको अस्पताल में नहीं जाना पड़ता था, कम खर्चा होता था। तो अभी धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे देखते हैं तो अस्पताल है, मरीजों से भरे हुए हैं, तो ये पूरा, और आयुर्वेद भी कहता है कि अगर हम हमारे पेट को अगर ठीक कर लेते हैं या पेट का जो खाना है उसको ठीक कर लेते हैं तो हमारी 80% जो बीमारियां हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाएगी। और अगर बीमारियां नहीं हो रही है इसका मतलब है कि हम स्वस्थ हैं और हमारी खाद्य प्रणाली है वो सही है। और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो बाजार में है वो कितना पैसा जा रहा है। अगर हम सारी चीजें, हम खेती तो कर रहे हैं है ना, लेकिन हम हमारे खाने के लिए अगर हम 60% या 50% चीजें बाजार से लानी पड़ रही है तो हमको हमारी किसानी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि हम क्या खेती कर रहे हैं और हमको क्या करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कैसे हमारे किसान भाई बहनों को जैविक खेती के माध्यम से अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तो सर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: જેમ કે ભાઈ બોનો આપણે આપણા વ્યાસમાં સોહનજી જોડે તક હતા અને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા ખાની વાતો બતાડી હે। આશા કરો કે આ હંગરી વાતે આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું, તો સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લાઈક ઓર કિતને મોરે પડો સૂટા।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
2: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: आज कार्यक्रम का विषय है दादा दादी और नाना नानी का साथ बच्चों के विकास में कितना महत्वपूर्ण है। कशिश, हम देखते हैं कि समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है।
0: बिल्कुल।
1: पहले संयुक्त परिवार की रौनक बहुत हुआ करती थी। घर में बच्चों की हंसी के साथ दादा दादी और नाना नानी का अनुभव भी होता था।
0: जी हाँ,
1: शाम होते ही आंगन में कहानियां सुनाई जाती थी, जीवन के अनुभव बांटे जाते थे और बच्चों को प्यार के साथ संस्कार भी मिलते थे। आज परिवार छोटे होते जा रहे हैं, जीवन तेज हो गया है और कई बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से दूर रहकर बड़े हो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में कशिश, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या बुजुर्गों का साथ बच्चों के विकास में सच में इतना महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है श्रोता साथियों, हाँ, और शायद पहले से कहीं ज्यादा अधिक भी।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी जी,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम एक प्यारा सा गीत यहाँ पहले सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय से रूबरू हम आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि दादा दादी और नाना नानी का साथ बच्चों के विकास में कितना महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम जैसा कि देखते हैं कि बच्चे केवल किताबों से नहीं सीखते, वे अपने आसपास के लोगों को देखकर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। साथियों
1: जी जी,
0: जैसे कि जिस घर में बुजुर्गों का स्नेह, धैर्य और अनुभव मौजूद होता है, वहाँ बच्चों का व्यक्तित्व अधिक संतुलित बनता है। साथियों, दादा दादी नाना नानी केवल रिश्ते नहीं होते, वे परिवार की जीवित धरोहर होते हैं और उनके अनुभव जो है वो जीवन की एक ऐसी पाठशाला है जो किसी किताब में नहीं मिलती। अंजलि जी
1: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जब माता पिता काम में व्यस्त होते हैं तब दादा दादी बच्चों के लिए समय निकालते हैं। वे बच्चों की छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनके सवालों का धैर्य से उत्तर देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: और उन्हें बिना किसी जल्दबाजी के समझाते हैं।
0: जी हाँ।
1: यही समय होता है कशिश बच्चों के मन में अपनापन और सुरक्षा की भावना पैदा करने का।
0: बिल्कुल,
1: जिस बच्चे को ये महसूस होता है कि घर में कोई उसे बिना शर्त सुनने वाला है तो उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, दादा दादी और नाना नानी बच्चों को केवल कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्य भी सिखाते हैं। सत्य बोलना, मेहनत करना, दूसरों का सम्मान करना, धैर्य रखना, बड़ों का आदर करना, प्रकृति से प्रेम करना और कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत न हारना, ये सब बातें श्रोता साथियों बच्चे के मन में धीरे धीरे बैठ जाती है और यही संस्कार आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की पहचान भी बनते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में बच्चों का अधिकांश समय मोबाइल, टीवी या इंटरनेट के बीच बीत रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे समय में साथियों दादा दादी का साथ बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने का कार्य करेगा। हम देखते हैं कि वे बच्चों को पारंपरिक खेल सिखाते हैं, लोकगीत सुनाते हैं, त्योहारों का महत्व बताते हैं और परिवार की पुरानी यादों से भी परिचित कराते हैं।
1: जी जी
0: अंजलि जी, इससे बच्चों में अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति सम्मान विकसित होता है। साथ ही बुजुर्गों के साथ रहने वाले बच्चों में धैर्य और संवेदनशीलता अधिक देखने को मिलती है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, वे ये सीखते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी गति और अपनी जरूरत होती है। जब बच्चा अपने दादा दादी की सेवा करना सीखता है, उन्हें दवा ला कर देता है, उनका हाथ पकड़कर चलता है या उनके साथ बैठकर बातें करता है साथियों, तब उसके भीतर करुणा, जिम्मेदारी और इंसानियत के गुण विकसित होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये ऐसे गुण हैं अंजलि जी जो किसी पाठ्य पुस्तक से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से ही मिलते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम जान पा रहे हैं आज कार्यक्रम के माध्यम से कि दादा दादी का साथ बच्चों के लिए क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी हमारे श्रोता साथियों के साथ यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हमारे साथियों को हम यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश, हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना था, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि दादा दादी बच्चों के लिए भावनात्मक सहारा भी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार बच्चे अपनी ऐसी बातें उनसे साझा कर देते हैं जो वह माता पिता से कहने में झिझकते हैं। इसका कारण ये होता है श्रोता साथियों कि बुजुर्ग बच्चों की बात बिना जल्दबाजी और बिना कठोर प्रतिक्रिया के सुनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनका धैर्य बच्चों को खुलकर बोलने का साहस देता है और ऐसे रिश्ते बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: माता पिता के लिए भी दादा दादी का साथ एक बड़ी ताकत होता है। श्रोता साथियों, बच्चों की परवरिश केवल आर्थिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि भावनात्मक जिम्मेदारी भी है। जब परिवार में बुजुर्ग साथ होते हैं तो बच्चों को अधिक समय, अधिक स्नेह और अधिक मार्गदर्शन मिलता है। श्रोता साथी, इससे माता पिता भी अपने काम और परिवार के बीच बेहतर संतुलन बना पाते हैं।
1: जी हाँ दिली जी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे कहना चाहेंगे कि आज कई परिवार नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से अलग अलग शहरों में रहते हैं। यदि अंजलि जी दादा दादी या नाना नानी साथ नहीं रह सकते, तब भी रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। सप्ताह में कुछ दिन वीडियो कॉल करना, बच्चों को नियमित रूप से उनसे बातें कराना और छुट्टियों में उनके पास भेजना और परिवार की कहानियों से उन्हें जोड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, दूरी केवल किलोमीटरों की होनी चाहिए, दिलों की नहीं। हमें यह समझना होगा कि हर पीढ़ी की सोच अलग हो सकती है। कभी कभी माता पिता और दादा दादी के विचार में मतभेद होना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यदि बच्चों के सामने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा जाए तो बच्चा भी सीखता है कि अलग विचार होने के बावजूद भी रिश्तों को कैसे निभाया जाता है।
0: जी हाँ,
1: साथ ही परिवार में सम्मान का वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव भी डालता है। अंजलि जी,
0: जी हाँ कशिश, आज समाज में बढ़ती अकेलेपन की भावना, तनाव और व्यवहार संबंधित समस्याओं के बीच बुजुर्गों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। श्रोता साथियों, उनका स्नेह बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा देता है। उनके अनुभव बच्चों को सही गलत का अंतर समझाते हैं।
1: जी जी।
0: उनका आशीर्वाद बच्चों के मन में आत्मविश्वास भरता है। इसलिए हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि बुजुर्ग केवल परिवार के बड़े सदस्य हैं। वास्तव में वे बच्चों के पहले जीवन मार्गदर्शक, संस्कारों के संरक्षक और अनुभवों के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि किसी बच्चे को अपने दादा दादी या नाना नानी का साथ मिलता है तो वह केवल एक रिश्ते का सुख नहीं पाता कशिश, बल्कि जीवन को समझने का एक अनमोल अवसर भी पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दादा दादी और नाना नानी का साथ बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे का भविष्य केवल अच्छी शिक्षा, महंगे स्कूल या आधुनिक सुविधाओं में नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि उसके जीवन में मिलने वाले स्नेह, संस्कार और अनुभवों से आकार लेता है। अंजलि जी, दादा दादी या नाना नानी का साथ बच्चों को वही अनमोल विरासत देता है जिसे न तो किसी बाजार से खरीदा जा सकता है और न ही किसी पुस्तक में पूरी तरह पाया जा सकता है।
0: जी जी
1: दोस्तों, उनका जो जीवन है वह स्वयं एक खुली किताब की तरह होता है जिसमें धैर्य, संघर्ष, रिश्तों की अहमियत, त्याग, प्रेम और जीवन जीने की सच्ची कला छिपी हुई होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: आज अंजलि जी जब परिवारों में व्यस्तता बढ़ रही है और बच्चों का बचपन मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के बीच सिमटता जा रहा है, तब बुजुर्गों की उपस्थिति बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम करती है। वे बच्चों को यह सिखाती है साथियों की खुशियां केवल चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों, अपनापन, साथ बैठकर बातचीत करने और एक दूसरे का सम्मान करने में भी मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: उनके साथ बिताया गया समय बच्चों के भीतर धैर्य, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का एक ऐसा बीज बोता है जो जीवन भर बच्चों को फल देता है।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कशिश की यह भी सच है कि हर परिवार की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। कई बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से दूर रहते हैं। ऐसे में दूरी को रिश्तों की दूरी नहीं बनने देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: एक फोन कॉल, एक वीडियो कॉल, छुट्टियों में साथ बिताए गए कुछ दिन या बच्चों को उनके जीवन के अनुभव सुनने का अवसर देना भी इस रिश्ते को जीवंत बनाए रख सकता है। बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि उनके परिवार में ऐसे लोग हैं जिनका आशीर्वाद, अनुभव और स्नेह हमेशा उनके साथ है। श्रोता साथियों, हम अपने बच्चों को केवल आधुनिक जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना ही अपना लक्ष्य न बनाएं, बल्कि उन्हें ऐसे रिश्तों से भी जोड़ें जो उनके चरित्र को मजबूत, मन को शांत और जीवन को समृद्ध बनाते हैं। क्योंकि जिस बच्चे को अपने बुजुर्गों का सानिध्य मिलता है वह केवल परिवार का इतिहास नहीं जानता बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने की समझ भी विकसित करता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि दादा दादी और नाना नानी घर के ऐसे बरगद हैं जिनकी छाया में बचपन सुरक्षित, संस्कारों से समृद्ध और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण बनता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम चाहते हैं दोस्तों कि आने वाली पीढ़ी केवल सफल ही नहीं बल्कि संवेदनशील, जिम्मेदार और संस्कारी भी बने, तो हमें बच्चों और बुजुर्गों के बीच के इस अनमोल रिश्ते को समय, सम्मान और अपनापन देकर सहेजना होगा।
1: जी जी।
0: यही रिश्ता परिवार को मजबूत बनाता है, समाज को संस्कार देता है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है, हमने जाना कि किस प्रकार से जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दादा दादी या नाना नानी होते हैं वो बच्चों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: भाई ने बोलो घर तकी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है माँ नी दुआ पिता नी उम्मीद निसोरनी मुस्कान
1: होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो हेलमेट पहरो सीट बेल्ट लगाड़ो एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा
0: सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं के आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि आज का युवा सचमुच स्वतंत्र सोच रखता है या भीड़ का अनुसरण करता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। जैसा कि हम बार बार बताते हैं, उनके विचार, उनके निर्णय और उनके सपने ही समाज और देश का भविष्य तय करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: युवा अवस्था वो समय होता है कशिश, जब हम अपनी पहचान बनाते हैं, अपने विचार विकसित करते हैं और जीवन की दिशा को तय करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये खड़ा है कि आज का युवा वास्तव में अपनी स्वतंत्र सोच के आधार पर निर्णय लेता है या फिर वो भीड़ के पीछे चलने को ही अपनी सफलता का रास्ता मान बैठता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जानने वाले हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुना

0: ना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना युवा साथियों को पहले एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन हम यहाँ पर करवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आज के युवा सचमुच स्वतंत्र सोच रखते हैं या भीड़ का अनुसरण करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: अगर जागृति जी, यहाँ पर सबसे पहले स्वतंत्र सोच के महत्व को हम जाने तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र सोच का अर्थ केवल दूसरों से अलग सोचना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, सही और गलत के बीच अंतर समझना, साथियों किसी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार न करना और अपने विवेक का उपयोग करना, साथ ही भीड़ के दबाव में आकर अपने सिद्धांत न बदलना। देखते हैं जागृति जी की स्वतंत्र सोच रखने वाला व्यक्ति दूसरों की बात सुनता अवश्य है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से करता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और स्वतंत्र सोच यानी कि किसी भी विषय पर स्वयं विचार करना, तथ्यों को समझना और फिर अपना निर्णय लेना। श्रोताओं, स्वतंत्र सोच रखने वाले व्यक्ति केवल इसीलिए किसी बात को नहीं मानते क्योंकि बाकी लोग उसे मान रहे होते हैं
0: जी।
1: वो हर बात को तर्क और वितर्क के साथ रखते हैं। इतिहास गवाह है, कशिश, की दुनिया में जितने भी बड़े महान परिवर्तन हुए हैं वे स्वतंत्र सोच रखने वाले लोगों के कारण ही संभव हो पाए हैं।
0: बिल्कुल।
1: जिन्होंने भीड़ से अलग सोचने का साहस किया वही समाज में नई दिशा देने में सफल हुए। अगर हम सभी लोग केवल दूसरों का अनुसरण करते रहते तो विज्ञान, शिक्षा, कला और समाज सुधार के क्षेत्र में इतनी प्रगति कभी भी नहीं हो पाती।
0: बिल्कुल।
1: आज हम देखते हैं कि आज का युवा पहले की तुलना में बहुत अधिक शिक्षित है, जागरूक है और तकनीक से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने उसे पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। अब जानकारी प्राप्त करना पहले से और अधिक आसान भी हो गया है।
0: बिल्कुल।
1: हम देखते हैं कि हमारे आज के युवा कई विषयों पर अपनी राय भी रखते हैं, वो सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं, नई तकनीकों को अपनाते भी हैं और अपने करियर के लिए नए विकल्प भी चुनते हैं।
0: बिल्कुल।
1: अनेक युवा ऐसे हैं जो पारंपरिक रास्तों को छोड़कर स्टार्टअप, सामाजिक कार्य, नवाचार और रचनात्मक क्षेत्रों में अपना भविष्य भी बना रहे होते हैं और ये स्वतंत्र सोच का ही परिणाम होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही अगर भीड़ का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति की हम बात करें तो जैसा कि आज सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उन्हें क्या पहनना है, कैसा दिखना है, कौन सा मोबाइल लेना है, किस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी है और किस विषय पर राय रखनी है, इनमें से कई बातें अब व्यक्ति स्वयं तय नहीं करता।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि चल रहे ट्रेंड तय करते हैं जागृति जी। यदि कोई वीडियो वायरल हो जाता है साथियों, तो लाखों लोग बिना सोचे समझे उसी की नकल करने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और यही भीड़ की मानसिकता है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है, यह ज्ञान भी देता है और भ्रम भी फैलाता है।
1: जी हाँ।
0: समस्या सोशल मीडिया नहीं है साथियों, समस्या तो यह है कि हम उस पर देखी गई हर बात को सच क्यों मान लेते हैं। कई बार अधूरी जानकारी, झूठी खबरें और भ्रामक वीडियो भी तेजी से फैल जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में यदि युवा बिना जांचे परखे उन्हें आगे बढ़ाते हैं तो ये स्वतंत्र सोच नहीं बल्कि भीड़ का अनुसरण होता है जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि आज भी बहुत सारे युवा अपने करियर का चुनाव अपनी रुचि के अनुसार नहीं करते कशिश।
0: बिल्कुल।
1: बल्कि समाज या मित्रों की पसंद के आधार पर करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं तो वे भी उसी दिशा में पढ़ने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कई युवा साथी केवल इसीलिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं क्योंकि उनके मित्र ऐसा कर रहे होते हैं। श्रोताओं, कुछ लोग केवल दूसरों को देखकर किसी पेशे का चयन कर लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जबकि उनकी रुचि किसी अन्य क्षेत्र में होती है और हम देखते हैं कि वे फिर जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सफलता वही मिलती है जहां व्यक्ति अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार निर्णय लेते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वहां नहीं मिलती जहां हम भीड़ को देखकर कार्य कर रहे होते हैं।
0: जी हां जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो वर्तमान में स्वतंत्र सोच रखने के बजाय भीड़ का अनुसरण कर रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और पैरसी गीत के साथ में।
1: जी हाँ।
0: तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि आज का युवा सचमुच स्वतंत्र सोच रखता है या भीड़ का अनुसरण करता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी श्रोता साथियों से बातचीत रही थी स्वतंत्र सोच के महत्व के बारे में, आधुनिक युवा और अवसरों की दुनिया के बारे में, भीड़ का अनुसरण करने की प्रवृत्ति के बारे में, सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर।
1: जी जी।
0: और यही बात करते हैं करियर चयन में भीड़ मानसिकता को लेकर। जैसा कि इस पर भी हमने बात की थी कि कई लोग, कई युवा साथी ऐसे होते हैं कि वो लोगों को देखकर अपनी पसंद को पीछे रखकर उनके जैसा कार्य करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो कभी जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं।
1: जी जी।
0: श्रोताओं, स्वतंत्र सोच और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। स्वतंत्र सोच केवल अलग राय रखने का नाम नहीं है, इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। स्वतंत्र सोच रखने वाला व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। कशिश, वो सही और गलत के बीच अंतर समझने का प्रयास करता है। आज हम देखते हैं कि आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि युवा केवल विरोध करने या अलग दिखने के लिए अलग विचार न रखे, बल्कि तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी सोच भी विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासनहीनता नहीं है श्रोताओं, बल्कि जिम्मेदार निर्णय लेने की क्षमता है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का दौर दिखावे का भी बनता जा रहा है। जागृति जी, कई बार व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज करके केवल इसलिए महंगी चीजें खरीदता है क्योंकि दूसरे भी उस चीज को खरीद रहे होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, महंगे मोबाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल। साथियों, यदि इन सबका उद्देश्य केवल दूसरों को प्रभावित करना है तो ये स्वतंत्र सोच नहीं है साथियों, बल्कि ये तो सामाजिक दबाव का परिणाम है।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि हमें सकारात्मक भीड़ और नकारात्मक भीड़ के बीच अंतर समझना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर भीड़ गलत नहीं होती दोस्तों। यदि युवा मिलकर रक्तदान करें, पेड़ लगाएं, स्वच्छता अभियान चलाएं, गरीब बच्चों को पढ़ाएं, मतदान के प्रति जागरूक हो तो यह सकारात्मक सामूहिकता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यदि बिना सोचे किसी अफवाह, नफरत, ट्रोलिंग या हिंसा का हिस्सा बन जाए हमारे युवा साथी तो यह खतरनाक भीड़ मानसिकता बन जाती है। जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि स्वतंत्र सोच विकसित करने में परिवार और शिक्षा व्यवस्था की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बच्चों को बचपन से प्रश्न पूछने, अपनी राय व्यक्त करने और विचारों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा तो उनमें आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच अपने आप ही विकसित हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, हम देखते हैं कि केवल रटने की बजाय चिंतन, विश्लेषण और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब युवा स्वयं सोचने और समझने लगेंगे कशिश, तभी वे भीड़ के दबाव से मुक्त होकर सही निर्णय ले पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि किसी भी देश का विकास केवल संसाधनों से नहीं चलता, बल्कि स्वतंत्र और जागरूक नागरिकों से होता है।
1: जी जी।
0: अगर युवा केवल भीड़ का अनुसरण करेंगे तो समाज में कभी भी नवाचार और परिवर्तन की गति कभी नहीं हो पाएगी और धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यदि युवा स्वतंत्र सोच रखेंगे, नए विचार प्रस्तुत करेंगे और समस्याओं के समाधान खोजेंगे तो देश तेजी से प्रगति करेगा, समाज तेजी से प्रगति करेगा।
1: बिल्कुल।
0: आज हम देखते हैं कि भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो सवाल पूछने का साहस रखे, सीखने की जिज्ञासा रखे और सकारात्मक बदलाव के लिए आगे आए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वतंत्र सोच व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और नवाचार को बढ़ावा देती है। साथियों, दुनिया के अधिकांश महान परिवर्तन उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने भीड़ से अलग सोचने का साहस दिखाया।
0: जी हाँ।
1: यदि युवा हमेशा भीड़ का अनुसरण करते रहेंगे तो इससे उनकी मौलिकता समाप्त हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: उनमें आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी, साथ ही युवाओं में मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। और साथ ही उनकी रचनात्मक शक्ति जो है वो इससे प्रभावित होगी। जागृति जी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमारे युवा साथियों को सबसे पहले हर जानकारी को सत्य मानने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए और अच्छे अच्छे पुस्तकों से उन्हें जुड़ना चाहिए। साथ ही प्रश्न पूछने की आदत को भी विकसित करना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों, दूसरों की सफलता देखकर निराश होने की बजाय हमें उनकी सफलता को देखकर प्रेरित होना चाहिए और उनकी आदतों को स्वयं में निखारना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: अगर हमारे युवा साथी ऐसा करेंगे जागृति जी तो न सिर्फ उन्हें सफलता मिलेगी बल्कि उनका भविष्य भी सुधरेगा।
0: बिल्कुल कशिश, हमें समझना होगा कि हर स्थिति में भीड़ का अनुसरण करना गलत नहीं है। कई बार अनुभवी लोगों की सलाह और समाज के सकारात्मक अनुभव हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम बिना सोचे समझे किसी का अनुसरण करने लगते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए श्रोताओं, युवाओं को संतुलन बनाना चाहिए, उन्हें दूसरों के विचार सुनने होंगे, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक और समझ के आधार पर ही लेना होगा।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम आज के युवाओं को देखें तो पाएंगे कि उनमें स्वतंत्र सोच की क्षमता भी है और भीड़ का अनुसरण करने की प्रवृत्ति भी है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ युवा अपने विचारों और निर्णयों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया, फैशन और सामाजिक दबाव के प्रभाव में निर्णय लेते हैं। भविष्य उन्हीं युवाओं का होगा जो भीड़ में रहकर भी अपनी पहचान बनाए रखेंगे।
1: जी हाँ।
0: जो दूसरों की बात सुनेंगे लेकिन आंख बंद करके किसी का अनुसरण नहीं करेंगे, और जो अपने विवेक, ज्ञान तथा मूल्यों के आधार पर जीवन की दिशा तय करेंगे।
1: जी
0: श्रोताओं, याद रखिए, भीड़ हमेशा रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल वही पाता है जो अपनी सोच से चलना सीखता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बात है आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारी ढेर सारी रही, और अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथी सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा हितर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बोन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत का विषय है साझी जिम्मेदारी साझा विकास।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, कहते हैं एक अकेला इंसान बदलाव की शुरुआत कर सकता है, लेकिन बदलाव को स्थायी बनाने के लिए पूरे समाज का साथ बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझता है, जब हर हाथ विकास की दिशा में आगे बढ़ता है, तभी सच्चे अर्थों में स्वराज और समृद्ध समाज का निर्माण होता है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: विषय है साझी जिम्मेदारी साझा विकास। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे कि किस तरह से मिलजुल कर किए गए छोटे प्रयास कैसे पूरे गाँव समाज और देश की तस्वीर को बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर बातें ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बातचीत करने वाले हैं साझी जिम्मेदारी साझा विकास। श्रोता साथियों, एक और एक 11 होते हैं यह केवल एक कहावत नहीं है बल्कि समाज निर्माण का मूल मंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई व्यक्ति अकेले काम करता है तो उसकी क्षमता सीमित होती है, लेकिन जागृति जी, जब वही पूरा समाज एक लक्ष्य के लिए साथ खड़ा होता है तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। यही भावना है साझी जिम्मेदारी साझा विकास का आधार। हम देखते हैं कि विकास केवल सरकार की योजनाओं या बड़े बड़े निर्माण कार्यों का नाम नहीं है। वास्तविक विकास तब होता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है और अपने गाँव, शहर, राज्य और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि ऐसा समाज भी है जहां प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार, जागरूक और आत्मनिर्भर और सहयोगी हो।
2: बिल्कुल अंजलि, कहा गया है कि अकेला दीपक एक घर को रोशन कर सकता है, लेकिन हजारों दीपक मिलकर पूरे नगर को प्रकाश से भी भर देते हैं।
1: बिल्कुल,
2: यही बात समाज पर लागू होती है श्रोता साथियों। जब कोई व्यक्ति अकेले बदलाव की शुरुआत करता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब पूरा समाज एक लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेता है, जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ लेता है, जब हर हाथ विकास के लिए आगे बढ़ता है, तब परिवर्तन केवल दिखाई नहीं देता बल्कि पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है।
1: जी जी,
2: जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं साझी जिम्मेदारी और साझा विकास को लेकर, तो श्रोता साथियों, विषय केवल एक विचार नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें बताता है अंजलि कि समाज का विकास केवल सरकार, पंचायत या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। विकास तब होता है जब प्रत्येक नागरिक ये महसूस करे कि इस देश, इस गांव, इस समाज और इस प्रकृति के प्रति उसका भी एक दायित्व है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज जब हमारा देश जो है वो विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, तब ये आवश्यक है कि विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए सरकार, समाज, पंचायत, युवाओं और महिलाओं और प्रत्येक नागरिक की साझी जिम्मेदारी आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
0: जब जिम्मेदारी साझा होगी तभी विकास भी साझा होगा। श्रोता साथियों, साझी जिम्मेदारी का अर्थ है किसी समाज के हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि समाज और देश के विकास में उसकी भूमिका क्या है। केवल सरकार से अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है। यदि गाँव में स्वच्छता बनाए रखनी है तो प्रत्येक नागरिक को जागृति जी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। यदि जल संरक्षण करना है तो हर घर को पानी बचाने की आदत अपनानी होगी।
1: बिल्कुल,
0: यदि शिक्षा को बढ़ावा देना है तो प्रत्येक परिवार को बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देनी होगी। सांझी जिम्मेदारी का अर्थ है मैं से हम तक की यात्रा।
1: जी हाँ,
0: जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सामूहिक हित के बारे में सोचने लगता है तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आता है।
2: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि देश आगे बढ़े, गांव विकसित हो, बेरोजगारी कम हो, शिक्षा बेहतर हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, पानी की कमी दूर हो और समाज में प्रेम और भाईचारा बना रहे।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन श्रोताओं, क्या केवल इच्छा व्यक्त करने से ये सब संभव हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा अंजलि। यही सच्चे स्वराज की भावना है जहाँ अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ चलते हैं।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं, यदि किसी गाँव की सड़क टूटी हुई हो तो उसकी मरम्मत सरकार करेगी, लेकिन यदि वही सड़क बनने के बाद लोग उस पर कचरा फैलाएंगे, नालियां बंद कर देंगे या उसकी

0: देखभाल न करें तो क्या वो सड़क लंबे समय तक अच्छी रह पाएगी? बिल्कुल भी नहीं।
1: बिल्कुल।
0: इसका अर्थ है अंजलि कि विकास केवल निर्माण से नहीं होता बल्कि संरक्षण से भी होता है, और संरक्षण तभी संभव है जब समाज जिम्मेदारी निभाएगा।
1: बिल्कुल।
0: इसी प्रकार श्रोता साथियों, हम यही कहना चाह रहे हैं कि विद्यालय तो बन जाते हैं लेकिन बच्चे पढ़ने ही न जाए, अभिभावक शिक्षा को महत्व ही न दे और समाज शिक्षकों का सहयोग ही न करे तो क्या शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा?
1: बिल्कुल
0: कभी भी नहीं होगा। यही कारण है कि विकास तभी सफल होता है जब जिम्मेदारी साझा होती है।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और हमारी बातें चल रही थी आपसे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, जान रहे थे साझी जिम्मेदारी साझा विकास को लेकर। अंजलि, यही अगर साझी जिम्मेदारी को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो साझी जिम्मेदारी का अर्थ है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को परिवर्तन का भागीदारी माने। यदि गांव में पानी की कमी है तो केवल सरकार की ओर देखने के बजाय गांव के लोग वर्षा जल संग्रह कर सकते हैं। यदि स्वच्छता की आवश्यकता है तो हर परिवार अपने घर और आसपास सफाई रख सकते हैं। और अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल भी करें। यदि समाज को नशा मुक्त बनाना है श्रोता साथियों, तो हर परिवार अपने बच्चे को सही संस्कार दे, यही साझी जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदारी साझा होती है तो परिणाम भी बेहतर होते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, अक्सर लोग विकास को केवल भवन, सड़क और पुल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक विकास उससे कहीं अधिक व्यापक है। विकास तब होगा श्रोता साथियों जब हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर महिला सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, हर किसान को उचित जानकारी और उचित मूल्य मिले, हर युवा को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिले, पर्यावरण सुरक्षित रहे और समाज में समानता और सहयोग बना रहे।
0: बिल्कुल,
1: यदि केवल आर्थिक विकास हो लेकिन सामाजिक असमानता बढ़ जाए तो वह अधूरा विकास कहलाएगा। हम अक्सर जागृति जी अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यदि हमें स्वच्छता बनाए रखनी है तो हमें इन सारे विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: यदि हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए तो हमें स्वयं ईमानदार बनना होगा। यदि हमें सुरक्षित सड़कें चाहिए तो हमें यातायात नियमों का पालन करना होगा। यदि हमें अच्छा स्वराज चाहिए तो हमें उसके लिए अच्छे कर्तव्य भी करने होंगे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि विकास की शुरुआत परिवार से होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर से देखते हैं। यदि परिवार बच्चों को ईमानदारी, सहयोग, अनुशासन और दूसरों का सम्मान करना सिखाए तो वही बच्चे आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक बन पाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, एक कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि एक गांव में वर्षों से पानी की समस्या थी।
1: बिल्कुल,
0: हर गर्मी में कुएं सूख जाते थे और लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। गाँव वालों ने कई बार शिकायत की लेकिन समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने निर्णय लिया कि वे केवल शिकायत नहीं करेंगे बल्कि समाधान भी खोजेंगे।
1: जी जी।
0: उन्होंने पंचायत, महिलाओं, किसान और विद्यालय के बच्चों को साथ जोड़ा। सबने मिलकर अंजलि वर्षा जल संग्रहण के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए, तालाब की सफाई की, पहाड़ियों पर पौधे लगाए और लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। पहले वर्ष ही बारिश का पानी रुक गया, अगले वर्ष हुए पहले से अधिक भर गए, तीसरे वर्ष गांव में पानी की समस्या लगभग समाप्त तो हो गई।
1: जी जी।
0: साथियों, ये चमत्कार नहीं था, ये था साझी जिम्मेदारी का परिणाम और साझा विकास की शुरुआत। जब समाज स्वयं जागता है तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है और यही सच्चा स्वराज है, यही आत्मनिर्भर भारत की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जब जंगल, जल और जमीन हमारी अमूल्य धरोहर है, इसका संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि प्रत्येक परिवार वर्षा जल संचयन करे, अनावश्यक जल व्यर्थ न बहाए, अधिक से अधिक पौधे लगाए और प्लास्टिक का कम उपयोग करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ श्रोता साथियों, शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तो अशिक्षा धीरे धीरे समाप्त तो हो जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: इसी प्रकार स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूकता फैलाना भी जागृति जी समाज की साझा जिम्मेदारी है। स्वस्थ नागरिक ही विकसित राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, आज की चर्चा का सार केवल इतना नहीं है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, बल्कि ये है श्रोता साथियों कि जब समाज का हर व्यक्ति अपनी छोटी सी जिम्मेदारी को भी ईमानदारी से निभाने लगता है तब पूरे समाज का भविष्य बदलने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना, उसकी इमारतें या उसकी आर्थिक संपन्नता भर नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक। जब नागरिक ये सोचने लगते हैं कि काम कोई और क्यों करे, इसकी शुरुआत मैं क्यों नहीं करूं, तभी परिवर्तन का नया अध्याय लिखा जाता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए साथियों, विकास केवल योजनाओं से नहीं बल्कि भागीदारी से आता है। सड़कें सरकार बना सकती है लेकिन उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: विद्यालय बन सकते हैं लेकिन उनमें शिक्षा का वातावरण हम सब मिलकर बनाते हैं। अस्पताल बन सकते हैं लेकिन स्वस्थ समाज तब बनता है जब लोग स्वच्छता, पोषण और जागरूकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ लगाए जा सकते हैं लेकिन उन्हें वृक्ष बनाना समाज की जिम्मेदारी होती है। जल स्रोत बनाए जा सकते हैं लेकिन उनमें पानी बचाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। सच्चा स्वराज हमें यही सिखाता है साथियों कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर हम केवल अधिकारों की बात करें और कर्तव्य को भूल जाए तो विकास अधूरा रह जाएगा, लेकिन यदि हम अपने कर्तव्य को अपनाएं तो अधिकार अपने आप मजबूत होते चले जाते हैं। आज हम केवल सुनकर ना रह जाएं, बल्कि एक छोटा सा कदम अपने लिए भी अपनाएं कि हम अपने गांव, अपने शहर और अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे। हम पानी की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे। हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। हम अपने आसपास किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और बुजुर्गों के अनुभव का आदर करेंगे। हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर इंसानियत और भाईचारे की भावना को मजबूत करेंगे।
1: बिल्कुल,
0: इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन कभी अचानक नहीं होते श्रोताओं, वे छोटे छोटे प्रयासों से ही जन्म लेते हैं। एक बूंद से घड़ा भरता अंजलि, एक बीज से विशाल वृक्ष बनता है और एक जिम्मेदार नागरिक से पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सांझी जिम्मेदारी और सांझा विकास एक दूसरे के पूरक हैं।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ जिम्मेदारी केवल कुछ लोगों पर छोड़ दी जाती है वहाँ विकास अधूरा रह जाता है, लेकिन जहाँ समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ कर आगे बढ़ता है वहाँ समृद्धि, समानता और आत्मनिर्भरता का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, जब जिम्मेदारी सबकी होती है तभी विकास सबका होता है, और यही सच्चे स्वराज का मार्ग है और यही समृद्ध भारत का आधार है, और यही एक जागरूक, आत्मनिर्भर और संवेदनशील समाज की सबसे बड़ी पहचान है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है तनाव और चिंता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना ही नहीं है बल्कि शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना भी होता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में तनाव और चिंता ऐसी समस्याएं बन चुकी हैं जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है।
0: बिल्कुल,
1: पहले जहाँ तनाव केवल नौकरी व्यवसाय और आर्थिक समस्याओं तक सीमित माना जाता था, वहीं मनीषा आज विद्यार्थी, गृहिणियां, किसान, युवा, बुजुर्ग, यहां तक कि बच्चे भी किसी न किसी रूप से तनाव और चिंता का अनुभव कर रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। थोड़ी सी मात्रा में तनाव हमें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, लेकिन मनीषा जब यही तनाव लंबे समय तक बना रहता है और चिंता का रूप ले लेता है तब ये शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाने लगता है।
0: जानना
1: हाँ। चाहेंगे श्रोता साथियों कि लगातार तनाव में रहने से व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लगती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आज के कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातें जानेंगे कि तनाव और चिंता क्या है, इसके बढ़ने के क्या कारण है और शरीर और मन पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है और इनसे बचने के लिए हम कौन कौन से उपायों को अपना सकते हैं। तो बातें हमारी कार्यक्रम में ढेर सारी बनी रहेंगी श्रोता साथियों से, लेकिन क्यों न कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं तनाव और चिंता का स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, यही अगर बात करें कि तनाव क्या है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि तनाव वह मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है जो किसी कठिन परिस्थिति में चुनौती या दबाव का सामना करते समय उत्पन्न होती है। श्रोता साथियों, हमें जब लगता है कि कोई स्थिति हमारी क्षमता से अधिक कठिन है, तब हमारा शरीर तनाव की अवस्था में चला जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तनाव श्रोता साथियों कई प्रकार से आ सकता है, जैसे कि सकारात्मक तनाव भी होता है। श्रोता साथियों, हमें किसी कार्य को समय पर पूरा करने, परीक्षा की तैयारी करने, प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने या जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल।
0: यही अगर नकारात्मक तनाव की बात करें, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं जब तनाव लगातार बना रहता है और व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता अंजलि जी, तब यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है।
1: बिल्कुल। अब यही बात आती है मनीषा चिंता की। तो श्रोता साथियों, चिंता भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित समस्या या खतरे को लेकर बहुत ज्यादा डर, घबराहट,

0: बेचैनी हमें महसूस होने लगती है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि हर व्यक्ति कभी न कभी चिंता तो करता ही है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन चिंता लगातार बनी रहे बिना किसी कारण के, तो हम देखते हैं कि हमें डर महसूस होता है, नींद नहीं आती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सामान्य जीवन प्रभावित होने लगता है,
1: बिल्कुल।
0: तो ये चिंता विकार का संकेत हो सकती है। हम देखते हैं कि तनाव और चिंता के कई कारण होते हैं। बहुत सी बार जो व्यक्ति होता है मनीषा, आर्थिक समस्याओं की वजह से भी इन सारी समस्याओं से घिर जाता है। हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की चिंता लोगों को सता रही है, बहुत सी बार बहुत से कार्यों के लिए लोगों को कर्ज और इधर उधर से पैसे जुटाने पड़ते हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से मानसिक दबाव पड़ता है और इसी के कारण तनाव और चिंता बढ़ने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी के समय में बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसे सुनने को आता है कि कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा दबाव है, तो समय पर काम पूरा न करने का दबाव भी बहुत सी बार लोगों को परेशान कर देता है।
1: जी हाँ,
0: कार्यभार, नौकरी खोने का डर, प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजें तनाव का कारण बनती है। नहीं, अगर विद्यार्थियों की बात करें तो बहुत सी बार विद्यार्थियों को अच्छे अंक लाने की अपेक्षा रहती है, प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, परिवार की जो उम्मीदें होती हैं वो भी विद्यार्थियों के लिए तनाव का कारण बन सकती है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ अंजलि जी, हम देखते हैं कि पारिवारिक समस्याओं के कारण भी तनाव आ जाता है। घर में विवाद, रिश्तों में मतभेद, जिम्मेदारियों का बोझ और संवाद की कमी मानसिक रूप से तनाव पैदा करती है।
0: बिल्कुल।
1: आजकल हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी और जो श्रोता साथी हैं वो सोशल मीडिया के प्रभाव में भी अंजलि जी तनाव में आ जाते हैं। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझना श्रोता साथियों, हर समय ऑनलाइन रहने की आदत और तुलना करने की प्रवृत्ति भी हमारी चिंता को बढ़ा सकती है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो भी बढ़ रही हैं। लंबे समय तक बीमारी, सर दर्द या किसी गंभीर रोग का कारण श्रोता साथियों मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।
0: जी जी।
1: आजकल अंजलि जी हम देखते हैं कि अकेलेपन की समस्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। परिवार और मित्रों से दूरी, भावनात्मक सहयोग की कमी, साथ ही श्रोता साथियों सामाजिक अलगाव चिंता को बढ़ाते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, तो इस तरीके से ये हमने जाना कि तनाव और चिंता लगातार हमारे शरीर में हमारे अंदर बनी हुई है, तो उसके क्या कारण होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यह बात आती है कि इसका शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो श्रोता साथियों लगातार तनाव शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है।
1: जी हाँ।
0: तनाव के दौरान शरीर में कई सारे ऐसे हार्मोन बढ़ जाते हैं जिससे रक्तचाप बढ़ता है और हृदय तेजी से धड़कता है और लंबे समय में हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। लगातार तनाव से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों को बार बार सर्दी, खांसी, संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तनाव का सीधा असर पेट, आंतों पर पड़ता है, जैसे कि गैस बनना, अपच, कब्ज, दस्त, भूख कम या अधिक लगना, एसिडिटी जैसी समस्याएं लोगों में होने लगती है। श्रोता साथियों, तनावग्रस्त व्यक्ति को देर तक नींद नहीं आती, रात में बार बार नींद खुलती है, अच्छी नींद न मिलने से शरीर जो है वो अधिक थका हुआ भी महसूस करता है। लगातार मानसिक दबाव, सिर दर्द, माइग्रेन का प्रमुख कारण बन जाता है और तनाव के कारण मनीषा हम देखते हैं कि गर्दन, कंधे, पीठ और मांसपेशियां लगातार तनावग्रस्त रहती हैं, जिससे दर्द और अकड़न बनी रहती है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों का प्रभाव जो है वो महिलाओं पर भी पड़ता है। हम देखते हैं कि महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता और पुरुषों में हार्मोन संबंधित बदलाव भी लंबे समय तक तनाव के कारण हो सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से तनाव और चिंता से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है इसको लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम बात कर रहे हैं तनाव और चिंता को लेकर।
1: जी हाँ।
0: तनाव और चिंता में हमने जाना कि तनाव कैसे होता है, कौन कौन से इसके कारण होते हैं। इसी के साथ चिंता के बारे में भी हमने जाना कि चिंता के क्या कारण है, और यही हम जान पा रहे थे कि तनाव का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: यही अगर बात करें मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की, तो श्रोता साथियों, तनाव केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल।
0: लंबे समय तक तनाव में रहने पर व्यक्ति निराश, उदास और उत्साहहीन महसूस करने लगता है। व्यक्ति स्वयं को असफल समझने लगता है और हर कार्य में उसे डर महसूस होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ मनीषा, हम देखते हैं कि तनावग्रस्त व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी सही निर्णय नहीं ले पाता, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भूलने की आदत और पढ़ाई या काम में मन न लगना भी आम बात हो जाती है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, तनाव में व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिससे उसके रिश्तों में तनाव भी बढ़ सकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि बच्चों और विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में बच्चे तनाव से अछूते नहीं हैं।
0: बिल्कुल।
1: परीक्षा का डर, अधिक होमवर्क, मोबाइल की लत, प्रतियोगिता, माता पिता की अपेक्षाएं, श्रोता साथियों, इन सभी कारणों से बच्चों में चिंता है वो बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसका परिणाम पढ़ाई में रुचि कम होना, व्यवहार में बदलाव, गुस्सा, डर, नींद की समस्या और आत्मविश्वास की कमी हमें देखने को मिलती है। यही अगर अंजलि जी बात करें कि महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि महिलाएं घर और कार्यस्थल दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। यदि उन्हें पर्याप्त आराम, सहयोग, मानसिक समर्थन नहीं मिले, तो वे तनाव का अधिक अनुभव कर सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसका प्रभाव हम देखते हैं कि उनके अंदर थकान, अनिद्रा, हार्मोनल असंतुलन, चिंता, उच्च रक्तचाप, मानसिक थकावट जैसी श्रोता साथियों समस्या हमें देखने को मिलती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें बुजुर्गों की, तो श्रोता साथियों, बढ़ती उम्र के साथ अकेलापन, बीमारी, आर्थिक चिंता और परिवार से दूरी के कारण बुजुर्ग जो है वो मानसिक तनाव का सामना करते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो इस तरीके से हम ये जान पाए मनीषा कि क्या क्या कारण है और किस तरीके से हमें समस्या देखने को मिलती है अगर हम तनाव और चिंता करते हैं। यहीं इसके बचाव के उपाय की बात करें, तो श्रोता साथियों, हमें नियमित व्यायाम करना है।
1: जी हाँ।
0: यानी कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट हमें टहलना होगा, योग करना होगा या हल्का व्यायाम कर सकते हैं। इससे तनाव जो है वो कई हद तक कम रहता है।
1: बिल्कुल।
0: अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी करना, गहरी सांस लेना, ये सारे जो अभ्यास हैं, इससे हमारा मन जो है वो शांत बना रहता है। हर दिन हमें 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद निकालनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल।
0: हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सही बना रहता है। हरी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, दूध, मेवे और पर्याप्त पानी हमें पीना है, जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। काम की योजना बनाकर चले, क्योंकि एक साथ बहुत से कार्य हम करने जाते हैं तो हमें तनाव होता ही है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा जो नियमित हमारे कार्य है उनको समय देंगे, तो हम देखेंगे कि काम का जो दबाव हम पर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ अपनी जो मन की परेशानी है उसे मन में दबा कर न रखें, अपने विश्वसनीय व्यक्ति को या अपने घर परिवार के व्यक्तियों से हमें साझा करने की जरूरत है। इससे हम देखते हैं कि हमारा तनाव, हमारी जो चिंता होती है वो अपने आप थोड़ी सी कम हो जाती है।
1: जी हाँ।
0: हर समय मोबाइल देखने की आदत कम करें, वास्तविक जीवन के रिश्तों को हमें महत्व देने की जरूरत है। संगीत सुनना, पुस्तक पढ़ना, बागवानी करना, चित्रकारी करना या कोई रचनात्मक कार्य करना हमारे मानसिक तनाव को कम कर सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, अपनी रुचियों को समय देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: हर समस्या का समाधान होता है, कठिन समय में धैर्य बनाकर रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें।
1: बिल्कुल।
0: तनाव या चिंता लंबे समय तक बना हुआ है तो सामान्य जीवन को प्रभावित होने या लगातार घबराहट, अनिद्रा, उदासी महसूस होने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ द्वारा बताए गए जो चीजें हैं उनका भी प्रयोग करने की जरूरत है।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, इस तरीके से

0: तनाव और चिंता जीवन की सामान्य परिस्थितियों का एक हिस्सा है, लेकिन यदि इन्हें समय पर नियंत्रित न किया जाए तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: स्वस्थ जीवन का अर्थ केवल शरीर का स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि मन का शांत होना, संतुलित होना और प्रसन्न होना भी है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व देंगे जितना कि हम शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं।
1: जी जी।
0: नियमित व्यायाम, योग, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच और परिवार का सहयोग हमें तनाव मुक्त जीवन की ओर ले जा सकता है। याद रखिए श्रोता साथियों, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए अपने मन की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि हमारे शरीर की।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
0: जी बिल्कुल।
1: अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से बिता लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और उसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है

0: 2700001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की, आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को
0: नमस्कार।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हर बार कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय को लेकर आपसे बातचीत करते हैं, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, कहते हैं ना कि समय और ज्वार कभी किसी का इंतजार नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि समय एक ऐसी अनमोल पूंजी है साथियों, जो हर किसी को बराबर ही मिलती है। ना कोई अमीर है तो ज्यादा खरीद सकता है इसे, ना कोई गरीब है जो इसे बचा सकता है। फिर भी श्रोता साथियों, फर्क क्यों पड़ता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब है साथियों, समय का सही उपयोग। क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानता है, उसे पता है कि उसे समय का सदुपयोग कैसे करना है, और वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में असफल भी नहीं होता। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर श्रोता साथियों आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और समय को इतनी महत्वपूर्णता क्यों दी जाती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रोता साथियों, की शुरुआत में मनोरंजन करना भी जरूरी है और ये तो हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है। तो पहले उसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। जैसा कि मैं आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और बातचीत कर रही हूँ एक नए विषय को लेकर। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूँ कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं समय के सही उपयोग को लेकर। साथियों, कहते हैं ना कि अगर जीवन में सबसे कीमती कुछ चीज है तो वह है हमारा समय। क्योंकि श्रोता साथियों, पैसा अगर खो जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे सुधारा जा सकता है साथियों, लेकिन एक बार जो समय निकल गया उसे वापस कभी नहीं पाया जा सकता। और यही हमारे वास्तविक जीवन का सत्य है। क्योंकि श्रोता साथियों, समय की कीमत वही समझता है जिसने इसे खोया हो। आज हम कई बार कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि समय सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। साथियों, अगर इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझूं, तो मेरे घर के पास में एक रवि नाम का लड़का रहता है। उसके पापा उसे बार बार कहते हैं कि रवि बेटा ये काम कर ले, रवि बेटा वो काम कर ले, लेकिन रवि जी कहते हैं कि पापा मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो श्रोता साथियों, क्या सच में हमारे पास समय की कमी है? नहीं साथियों, समय की कमी नहीं है, कमी तो है सिर्फ प्राथमिकता की। क्योंकि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं ये हमें ही नहीं पता चलता। तो ऐसे में श्रोता साथियों, हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि समय का खर्च हम कहाँ कर रहे हैं। क्यों हम बार बार ऐसा कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है? क्योंकि श्रोता साथियों, व्यस्त होना जरूरी नहीं है, सही काम में व्यस्त होना जरूरी होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो हम कहने लग जाते हैं कि मेरे पास तो इस चीज का समय ही नहीं था, या पापा ये काम आपने करने के लिए बोला था, इस काम को करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं बचा। साथियों, हम देखते हैं कि एक छात्र जो है वो हमेशा ये कहता है कि उसके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं है, लेकिन वह रोज घंटों मोबाइल और टीवी पर समय बिताता है। एक दिन उसके शिक्षक उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं था, तो तुमने ये काम कर कैसे लिया, क्या तुम समय का सही उपयोग नहीं कर रहे? साथियों, उस दिन के बाद छात्र ने अपने समय का हिसाब करना शुरू किया कि वो कौन सा समय कहाँ बिता रहा है। धीरे धीरे उसने अपने सही समय का उपयोग करना सीख लिया और कुछ ही समय बाद वो क्लास में श्रोता साथियों अव्वल आने लगा। दोस्तों, यही है समय की असली पहचान। हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास समय का सही उपयोग करने की चाबी है, यानी कि उसे पता है कि वह कैसे समय का सही उपयोग कर सकता है, कहाँ इसका उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कैसे कर सकता है, तो वो व्यक्ति श्रोता साथियों अपने जीवन में जरूर सफल होता है। क्योंकि हम वर्तमान में ये समस्या तो बहुत ज्यादा देखते हैं, खास करके हमारे बच्चों में हम ये देखते हैं साथियों कि अगर हम हमारे बच्चों को कहें कि बेटा ये काम कर लेना, तो वो कहेगा कि पापा मैं कल कर लूंगा। और कल जब हम उससे ये पूछेंगे कि तूने ये काम कर लिया, तो वो बोलेगा नहीं पापा, समय ही नहीं मिला। तो श्रोता साथियों, ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है हम सभी के सामने कि मुझे समय नहीं मिलता, ये हम कह सकते हैं कि समय की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस काम को प्राथमिकता दे रहे हैं और किस काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि किस काम को करने में हमें ज्यादा समय लग रहा है और किस काम को हम कम समय में ही पूरा कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि हमें अपने जीवन में समय के सही उपयोग करने को प्राथमिकता देना चाहिए। हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सा काम सही समय पर होना चाहिए और कौन सा काम करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मैं उसे बाद में करूं। क्योंकि दोस्तों, जो समय की कद्र करता है, समय उसे ही सफल बना देता है, ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अगर बात करूं आज के हमारे युवाओं की, तो साथियों आज के युवाओं के लिए तो समय का सही उपयोग करना इतना जरूरी हो गया है कि बात ही कुछ और हो जाती है। क्योंकि यही समय उनके भविष्य को बदल रहा है साथियों। अगर अभी भी हमारे युवा साथी समय का सही उपयोग करना नहीं समझेंगे, तो हम कह सकते हैं साथियों कि हम आगे फिर तो समय के उपयोग को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में मेरा आपसे कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों कार्यक्रम सपनों की उड़ान के माध्यम से, कि हमें अपने जीवन में समय को प्राथमिकता देनी है, लेकिन उसमें भी सही समय क्या है उसकी भी पहचान करनी है। तो जैसा कि बातें तो कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे चली रही है साथियों, ये बातें मैं आगे भी करना चाहूंगी। आगे भी हम जानेंगे श्रोता साथियों कि समय का सही उपयोग करना हम कैसे सीखें, तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।
आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा बहुत ही अच्छा विषय आपके साथ चल रहा है और गीत से पहले भी बातचीत हम कर रहे थे समय के सही उपयोग को लेकर। और गीत से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हमारे जो युवा साथी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है समय के उपयोग को समझने की, समय के महत्व को समझने की, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के युवाओं के लिए यही सही समय है जो उनके भविष्य को तय करेगा। साथियों, अगर युवा आज अपने समय को सही दिशा में लगाएंगे दोस्तों, तो उनका कल उज्जवल होगा। लेकिन अगर वे भी समय को यूं ही बर्बाद करते रहेंगे तो हम देखेंगे साथियों कि हमें बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज का किया गया सही उपयोग ही कल की सफलता का आधार बनता है। श्रोता साथियों, तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि समय का सही उपयोग करना हर पीढ़ी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में अगर हम अपने बच्चों को बताते रहें कि समय का सही उपयोग करना क्यों जरूरी है, तो बचपन से ही उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि समय कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम युवा साथियों को समझाएं कि समय कितना महत्वपूर्ण है, तो अगर वो इसी समय भी समझ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, समय का उपयोग करने की कोई उम्र नहीं होती। हर समय का सही उपयोग करना हम हर उम्र में सीख सकते हैं, लेकिन एक बार दोस्तों सही समय निकल गया तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि हमें समय का सदुपयोग करना है, तो इसी बीच प्रश्न ये आता है कि समय का सही उपयोग करना हमें सीखना कैसे है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि समय का सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने हर दिन की एक योजना बनानी है। दोस्तों, सबसे पहले उठते ही सुबह आप ये तय करें कि आपको आज पूरे दिन में करना क्या है, यानी कि आप एक शेड्यूल बना लें कि इस समय पर आप ये कार्य करेंगे, उस समय पर आप ये कार्य करेंगे। इससे होगा क्या साथियों, इससे आपका समय भी बचेगा और आप हर काम को सही समय पर कर पाएंगे। दूसरी बात, जरूरी काम को आप प्राथमिकता दे साथियों, क्योंकि आपको करना क्या है कि पहले आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो कर लेना है। बाद में श्रोता साथियों, छोटे मोटे काम तो लगे रहेंगे। उसके बाद तीसरी बात मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग श्रोता साथियों जितना हो सके सीमित मात्रा में करना है। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल कहीं नहीं जा रहा है, समय जा रहा है, तो हमें समय का उपयोग करना है, मोबाइल का नहीं। समय का हिसाब भी रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दिन में समय कहाँ जा रहा है, किस काम में जा रहा है, इसका हिसाब होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर अपना समय व्यर्थ जाने दे रहे हैं और कहाँ पे आप सही समय का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, समय को नहीं जाने दें, खुद मैनेज करना सीखिए कि किस तरीके से आप समय का सदुपयोग करेंगे, समय को मैनेज करेंगे। साथियों, आप खुद ही सोचिए कि कितनी बार हम ये कहते हैं कि कल से शुरू कर लेंगे इस काम को, कितनी बार हमने अपने सपनों को भी टाल दिया श्रोता साथियों। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि कल कभी नहीं आता, जो आता है वो सिर्फ आज ही आता है। जो आज को खो देता है साथियों, वो कल को भी खो देता है। इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे साथियों कि आज हमने जैसा कि जाना कि समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे दोस्तों, तो हमें अपने सपनों को साकार करने का समय भी मिल जाएगा। इसलिए साथियों, याद रखिए कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। हर मिनट की कीमत आपको समझनी होगी, क्योंकि यही मिनट मिलकर जीवन बनाते हैं। श्रोता साथियों, आज से ही अपने समय को पहचानिए। तो आज से ही श्रोता साथियों, अपने सही समय को पहचानिए, उसे सही दिशा में लगाइए और अपने सपनों को सच बनाइए। इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि बातें जैसा कि कार्यक्रम में ढेर सारी हो चुकी है, तो विदा मैं जरूर लूंगी। लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ कार्यक्रम में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान से मैं विदा लेने की अनुमति चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में समय के महत्व को लेकर जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी, और उन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर श्रोता साथियों, आप भी अपने जीवन में समय के महत्व को जरूर समझेंगे। तो जैसा कि बातें तो पूरी हो चुकी है, समय भी श्रोता साथियों अब हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, ये हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायी विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटो अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी बात करने का विषय है श्रोता साथियों से कि आजकल लोग जल्दी आक्रोशित क्यों हो जाते हैं और अपनी संवेदनाएं क्यों खोते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, क्या कभी आपने महसूस किया है कि आज छोटी छोटी बातों पर लोग गुस्सा हो जाते हैं, सड़क पर मामूली सी बहस देखते ही लड़ाई बदल जाती है, घर में किसी ने एक शब्द ऊंचा बोल दिया तो रिश्तों में दूरी आ जाती है, सोशल मीडिया पर अलग राय रखने वाले लोगों के बीच ऐसे कटुता फैल जाती है कि मानो वे एक दूसरे के दुश्मन।
0: बिल्कुल,
1: दूसरी ओर किसी के दुख, किसी की परेशानी या किसी की मजबूरी को देखकर भी कई बार लोग बिना रुके आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हमारी संवेदनाएं कम होती जा रही हैं।
0: जी हाँ,
1: लेकिन कशिश सवाल ये है कि क्या सचमुच इंसान बदल गया है या फिर समय और परिस्थितियों ने उसके व्यवहार को बदल दिया है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें इसी विषय पर रहने वाली है। जैसा कि कार्यक्रम का दस्तूर है कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवाते हैं, तो क्यों ना इसी गीत के साथ में हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारा सा गीत सुनवाकर मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आजकल लोग बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं, उसके क्या कारण है और उनकी संवेदनाएं इतनी कम क्यों होती जा रही है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम मनुष्यों को अन्य प्राणियों से अलग बनाने वाली सबसे बड़ी विशेषता हमारी संवेदनशीलता, सहानुभूति और हमारा विवेक है। अंजलि जी, यदि गुण उसे श्रोता साथियों, यही गुण हमें दूसरों के साथ रहने की प्रेरणा देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वर्तमान समय में ऐसा महसूस होने लगा है कि लोगों का धैर्य कम होता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बढ़ रहा है और दूसरों के प्रति संवेदनाएं घटती जा रही हैं।
1: बिल्कुल।
0: आए दिन सड़क पर दोस्तों मामूली विवाद, पारिवारिक झगड़े, पड़ोसियों के बीच हिंसा और छोटी सी बात पर कह सकते हैं कि कई ऐसी आक्रामक घटनाएं जो होती हैं वो समाज को झंझोर देती है। ये स्थिति केवल दोस्तों कानून व्यवस्था के लिए एक कह सकते हैं कि उनका ही नहीं है बल्कि हमारे सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य का भी विषय है। तो ऐसे में हमें श्रोता साथियों इस विषय के प्रति सोचने की आवश्यकता है।
1: जी हाँ कशिश, गुस्सा कोई भावना नहीं, हर इंसान को कभी न कभी गुस्सा आता ही है। लेकिन आज फर्क ये है कि धैर्य कम होता जा रहा है और प्रतिक्रिया बहुत तेज हो गई है।
0: जी हाँ,
1: आज का जीवन पहले से कहीं अधिक भागदौड़ भरा है। सुबह से रात तक काम, जिम्मेदारियां, आर्थिक दबाव, भविष्य की चिंता और प्रतिस्पर्धा ने श्रोता साथियों लोगों के मन को लगातार तनाव में रखा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: जब मन पहले से ही दबाव में हो तो छोटी सी बात भी बड़ी लगने लगती है। मोबाइल और सोशल मीडिया ने हमें दुनिया से जोड़ा जरूर है लेकिन कई बार मन को स्थिर भी कर दिया है।
0: बिल्कुल।
1: हर समय नई खबरें, बहस, नकारात्मक वीडियो, विवाद, तुलना देखने से मन बेचैन रहता है।
0: जी हाँ।
1: धीरे धीरे व्यक्ति बिना पूरी बात समझे प्रतिक्रिया देने लगता है। ऑनलाइन बहस की आदत भी कशिश कई बार वास्तविक जीवन में भी दिखाई देने लगी है।
0: जी हाँ,
1: पहले परिवार एक साथ बैठते थे, सुख दुख साझा किया करते थे, गांव की चौपाल, पड़ोस की बैठकें, सामूहिक मेल जोल लोगों को एक दूसरे से जोड़े रखता था।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन आज एक ही घर में रहने वाले लोग कई बार मोबाइल की स्क्रीन में व्यस्त रहते हैं। जब संवाद कम होता है कशिश तो गलतफहमियां बढ़ती हैं और जहां गलतफहमियां बढ़ती हैं वहां आक्रोश भी जल्दी जन्म लेता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, क्योंकि हम देखते हैं कि आक्रोश केवल क्रोध नहीं है, यह मन के भीतर जमा असंतोष, तनाव, निराशा और असुरक्षा का एक विस्फोट साथियों। जब व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पाता है तब उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे समझ नहीं पा रहा है। जब अपेक्षाएं टूटती हैं तब उसके भीतर आक्रोश जन्म लेता है। दोस्तों ऐसे में आज का मनुष्य बाहर से मुस्कुराता जरूर दिखाई देता है लेकिन भीतर अनेक चिंताओं और दबाव से घिरा रहता है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि आक्रोश बढ़ने के ढेर सारे कारण हैं, जैसे कि धैर्य की कमी और तुरंत परिणाम पाने की आदत। अंजलि जी, आज का समय तेजी से बदलता जा रहा है, लोग हर काम पूरा होने की अपेक्षा रखते हैं। जब उनकी इच्छा के अनुसार परिणाम उन्हें नहीं मिलता है तो निराशा और क्रोध पैदा होता है और धीरे धीरे यही अधीरता श्रोता साथियों हिंसक व्यवहार का रूप ले लेती है।
1: जी जी,
0: हम देखते हैं अंजलि जी कि आज का जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज हो चुका है। सुबह से लेकर रात तक काम ही काम, प्रतियोगिता, लक्ष्य, समय की कमी और भविष्य की चिंता, इन सब ने दोस्तों व्यक्ति को मानसिक रूप से थका दिया है। जब मन लगातार तनाव में रहता है अंजलि जी, तब धैर्य कम होने लगता है, जिसका परिणाम ये है कि छोटी छोटी बातों पर बड़े विवाद हो जाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम यही हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि संवेदनशील होना कमजोरी नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन आज कई लोग दूसरों की पीड़ा को देखकर भी उतना प्रभावित नहीं होते।
0: बिल्कुल।
1: इसका एक कारण यह है कि हम रोज इतनी सारी दुखद खबरें देखते हैं कि मन धीरे धीरे उनके प्रति सुन्न होने लगा है। दूसरा कारण यह है कि बहुत ज्यादा व्यस्तता, जब व्यक्ति केवल अपनी समस्याओं में ही उलझा रहेगा तो दूसरों के लिए समय और भावनाएं कम बचती हैं।
0: बिल्कुल।
1: तीसरा प्रभाव होता है स्वार्थ की बढ़ती प्रवृत्ति, यानी कि श्रोता साथियों जब समाज में सफलता का अर्थ केवल पैसा और प्रतिष्ठा रह जाए तो सहयोग, करुणा और अपनापन पीछे छूटने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कार्यक्रम के माध्यम से कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे अपने आसपास देखते हैं। यदि घर में हर छोटी बात पर गुस्सा किया जाए तो दूसरों की बुराई की जाए तो हर समय तनाव का माहौल ही घर में बना रहेगा। बच्चे भी वैसा ही व्यवहार सीखेंगे, इसलिए परिवार केवल रहने की जगह नहीं कशिश बल्कि संस्कारों की पहली पाठशाला है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि रोजगार की चिंता, आर्थिक समस्याएं, पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां दोस्तों, और भविष्य की अनिश्चितताएं जो होती है वो लोगों के मन पर भारी असर डालती है। यदि तनाव को सही ढंग से संभाला जाए तो व्यक्ति छोटी सी बात पर भी अपना आपा खो देता है।
1: जी जी,
0: ऐसे में संवाद की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे कि अंजलि जी आपने बताया था कि पहले लोग साथ बैठकर भोजन करते थे, बातें बैठकर करते थे, लेकिन वही आज उस जगह को मोबाइल और डिजिटल दुनिया ने ले लिया है।
1: बिल्कुल,
0: लोग जिसके कारण एक दूसरे से दूर हो गए हैं। जब श्रोता साथियों मन की बातें साझा ही नहीं होती है तो गलत फहमियां बढ़ जाती है, जिससे गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है।
1: जी जी,
0: इसी के साथ अगर सोशल मीडिया के प्रभाव को हम जाने तो आज सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने के साथ साथ नई समस्याएं भी पैदा की हैं। हर समय दूसरों की सफलता देखना, तुलना करना, लाइक्स और फॉलोवर्स के आधार पर स्वयं का मूल्यांकन करना, लगातार नकारात्मक समाचार देखना, ये सभी बातें अंजलि जी मन पर व्यक्ति के गहरा प्रभाव डालती है।
1: बिल्कुल,
0: इसके अलावा इंटरनेट पर लोग बिना सोचे समझे कठोर भाषा का उपयोग करने लगे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ये व्यवहार वास्तविक जीवन में भी उनके दिखाई देने लगा है।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना था, हम जान पाए थे कि किस तरीके से लोगों का जल्दी आकर्षित होना उनके जीवन को प्रभावित करता है। श्रोता साथियों, यही अब बात आती है कि क्या आक्रोश को रोका जा सकता है? तो बिल्कुल, क्रोध को पूरी तरह खत्म करना संभव तो नहीं है, क्योंकि एक स्वाभाविक भावना होती है, लेकिन उसे सही दिशा देना अवश्य संभव है। जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ पल रुककर सोचना चाहिए कि क्या हमारी बात से समस्या सुलझेगी या और बढ़ जाएगी। कई बार कुछ मिनट का धैर्य वर्षों पुराने रिश्ते बचा लेता है।
1: बिल्कुल,
0: सुनना भी एक कला है कशिश। आज अधिकांश लोग अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के सुनने का धैर्य कम होता जा रहा है।
1: जी हाँ।
0: जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसकी बात सुनी ही नहीं जा रही, तब उसके भीतर निराशा और क्रोध बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: परिवार हो, विद्यालय हो, कार्यस्थल हो या ग्राम सभा, हर जगह सुनने की संस्कृति विकसित करनी होगी। संवेदनशीलता कैसे

0: परिणाम चाहते हैं साथियों। धीमा इंटरनेट भी हमें बहुत ज्यादा परेशान कर देता है।
1: बिल्कुल,
0: ट्रैफिक में कुछ मिनट रुकना हमें कठिन लगता है और कोई हमारी बात से असहमत हो जाए तो हम नाराज हो जाते हैं। यानी कि धैर्य कम होता जा रहा है और अधैर्य आक्रोश का जन्म ले रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में अंजलि जी, संवेदनाओं का मतलब है दूसरों के सुख दुख को महसूस करना, उनकी परिस्थिति को समझना, उनकी सहायता के लिए आगे आना। लेकिन आज तो लोग बिल्कुल व्यस्त हो चुके हैं, उन्हें अपने अलावा किसी और की पीड़ा देखने का समय ही नहीं मिलता। बार बार हिंसा, दुर्घटनाएं, दुखद समाचार देखने से मन भी धीरे धीरे असंवेदनशील होने लगता है। इससे श्रोता साथियों, मनोविज्ञान में भावनात्मक थकान भी कहा जाता है। इसके अंजलि जी ढेर सारे दुष्परिणाम है, जैसे कि समाज में संवेदनाएं समाप्त हो जाएं तो केवल व्यक्ति ही नहीं पूरा समाज इससे प्रभावित होगा।
1: बिल्कुल कशिश,
0: परिवार टूटने लगेंगे, मित्रता कमजोर हो जाएंगी, अपराध बढ़ने लगेंगे, मानसिक तनाव और अवसाद बढ़ेगा, समाज में विश्वास कम होने लगेगा और बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा।
1: जी हाँ कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि एक छोटी सी कहानी है कि एक गांव में दो पड़ोसी रहते थे। एक दिन किसी छोटी सी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों ने कई महीनों तक एक दूसरे से बात नहीं की। कुछ समय बाद गांव में तेज बारिश हुई, एक परिवार का कच्चा मकान गिरने लगा। वही पड़ोसी जिससे झगड़ा था उसने पहले दौड़कर मदद के लिए वो वहां पहुंचा। उसने कहा, रिश्ते गुस्से से बड़े होते हैं और इंसानियत हर नाराजगी से ऊपर होती है। उस दिन दोनों की आंखों में आंसू थे, झगड़ा समाप्त हो गया। ये कहानी हमें बताती है कि संवेदनशीलता कभी भी किसी भी टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सकती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारे वागड़ अंचल की पहचान केवल प्राकृतिक सुंदरता से नहीं है बल्कि सामूहिक जीवन की भावना से भी रही है।
0: बिल्कुल,
1: पहले गांव में किसी के घर दुख होता तो पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो जाता। खेत में काम हो, घर बनाना हो, शादी ब्याह हो या संकट का समय, लोग बिना बुलाए मदद के लिए पहुंच जाते थे। यही सामाजिक संवेदनाएं कशिश हमारी सबसे बड़ी पूंजी थी। आज आधुनिक जीवन में हम इन परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। यदि हम फिर सहयोग, अपनापन और सामूहिक जिम्मेदारी को अपनाएं तो समाज में बढ़ती कटुता काफी हद तक कम हो सकती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि समस्या बड़ी है लेकिन समाधान भी हमारे ही हाथों में है। सबसे पहले तो श्रोता साथियों, हमें अपने भीतर धैर्य विकसित करना होगा। दूसरों की बात पूरी सुनने की आदत हमें डालनी होगी। परिवार के साथ समय बिताने के लिए थोड़ा सा समय हमें निकालना होगा। बच्चों को केवल सफलता ही नहीं बल्कि संस्कार भी देने होंगे। मोबाइल और सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करना हमें स्वयं पर भी लागू करना होगा और बच्चों पर भी। साथ ही योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से मानसिक संतुलन बनाए रखना होगा। अंजलि जी,
1: बिल्कुल,
0: हम देख सकते हैं कि हमें छोटी छोटी मानवीय आदतें भी अपनानी होगी, जैसे कि किसी की सहायता करना, धन्यवाद कहना, क्षमा मांगना, क्षमा करना, जरूरतमंद का हाथ पकड़ना। दोस्तों, ये सभी संवेदनाओं को जीवित रखती हैं।
1: बिल्कुल,
0: हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता और क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण होता है।
1: जी जी,
0: वही स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। दोस्तों, इन सभी विचारों में आज भी हमारे समाज को दिशा देने की शक्ति है।
1: बिल्कुल, तो कशिश इस तरीके से कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे हैं। ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ अंजलि जी,

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि अंजलि जी, बातें बहुत अच्छी चल रही है कि आजकल लोगों में आक्रोशित की जो भावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और संवेदनाओं की कमी देखी जा रही है।
1: जी जी।
0: जिससे पहले जैसा कि हमने बताया था कि कुछ महान व्यक्तियों के विचार थे कि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन क्षमा करना शक्तिशाली व्यक्ति का गुण होता है।
1: बिल्कुल।
0: और स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था दोस्तों कि दूसरों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची पूजा है। अगर इन सभी विचारों को आज भी हम अपने जीवन में अपनाते हैं अंजलि जी, तो हम समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि दोस्तों, आज का विज्ञान बहुत शक्तिशाली है और उसने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन यदि हम अपनी संवेदनाएं खो देंगे तो सारी उपलब्धियां अधूरी रह जाएंगी। आक्रोश आग की तरह होता है, यह पहले स्वयं को जलाता है साथियों, फिर दूसरों को, जबकि संवेदना उस वर्षा की तरह है जो टूटे हुए मनों को भी एक नई दिशा और एक नई आशा दे सकती है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए अंजलि जी कि हम बिना आक्रोशित या क्रोधित हुए दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेंगे, परिवार में संवाद बढ़ाएंगे, बच्चों को प्रेम और संस्कार देंगे और सबसे महत्वपूर्ण, एक अच्छे इंसान बनने का पूरा प्रयास करेंगे।
1: जी हाँ कशिश, आज का युवा समाज का भविष्य है। यदि युवा सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने के बजाय सकारात्मक संदेश साझा करे, किसी विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी से सुलझाए, अपने व्यवहार से सम्मान का उदाहरण प्रस्तुत करे, तो आने वाली पीढ़ी भी उसी दिशा में आगे बढ़ेगी।
0: जी जी।
1: सच्ची ताकत ऊंची आवाज में नहीं बल्कि संयमित व्यवहार में होती है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि परिवार में प्रतिदिन कुछ समय बिना मोबाइल के साथ हमें बैठने की आदत डालनी चाहिए। बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि सहानुभूति, सहयोग, क्षमा और धैर्य का महत्व भी सिखाना चाहिए। यदि माता पिता अपने व्यवहार में शांति और सम्मान दिखाएंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे। कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि समाज तभी मजबूत बनता है जब लोग एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। किसी की गलती पर केवल आलोचना करने के बजाय उसे सुधारने का अवसर हमें देना चाहिए। किसी दुखी व्यक्ति की दुखी व्यक्ति को केवल सलाह नहीं बल्कि साथ और सहारे की आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों, इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका पद, धन या प्रसिद्धि नहीं कशिश, बल्कि उसका व्यवहार और उसकी संवेदनशीलता होती है। क्योंकि क्रोध हमारे भीतर की आग है, यदि यह नियंत्रण में रहे तो अन्याय के विरुद्ध आवाज बनती है, लेकिन यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो रिश्तों, परिवार और समाज जो है वो पूरी तरीके से जला देती है। इसी प्रकार संवेदनाएं हमारे मन की वह रोशनी है जो हमें दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाती है। जब यह रोशनी कम होने लगती है तब समाज केवल लोगों का समूह बनकर रह जाता है, परिवार केवल एक मकान बन जाता है और रिश्ते केवल औपचारिकता बन जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, प्रतिक्रिया देने से पहले समझने की कोशिश करेंगे, गुस्से से पहले संवाद करेंगे, निर्णय से पहले परिस्थिति जानेंगे और हर दिन कम से कम एक ऐसा काम करेंगे जिससे किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही पहचान का संकट भी कह सकते हैं कि आज बढ़ रहा है। जैसे कि बहुत से लोग अपनी पहचान को केवल नौकरी, धन, प्रसिद्धि या सोशल मीडिया की लोकप्रियता से जोड़ने लगे हैं। जब इनमें श्रोता साथियों कमी आती है तो व्यक्ति स्वयं को असफल समझने लगता है और उसका व्यवहार चिड़चिड़ा और आक्रामक हो जाता है।
1: जी जी।
0: साथ ही हमें मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी भी नहीं करनी है, जैसे कि तनाव, चिंता, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्याएं पहले की तुलना में अधिक दिखाई देती है, लेकिन लोग इनके बारे में खुलकर बात नहीं करते अंजलि जी।
1: बिल्कुल।
0: जब मन लंबे समय तक दबाव में रहता है तो उसका प्रभाव व्यवहार और संवेदनशीलता दोनों पर पड़ता है। साथ ही पारिवारिक मूल्यों का कमजोर होना भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि संयुक्त परिवारों के कम होने से बच्चों को धैर्य, सहयोग, त्याग और बड़ों के अनुभवों से सीखने के अवसर कम मिल रहे हैं, जिसके कारण परिवार के केवल साथ रहने का स्थान नहीं रह गए हैं बल्कि भावनात्मक शिक्षा का पहला विद्यालय भी माने जाते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, समाज की पहचान केवल उसकी ऊंची इमारतों, नई तकनीकों या आर्थिक विकास से नहीं होती बल्कि इस बात से होती है श्रोता साथियों कि वहाँ रहने वाले लोग एक दूसरे से किस प्रकार से बातचीत करते हैं और उनके बीच में कैसे संवेदनशीलता है। यदि किसी गाँव, कस्बे या शहर में लोग एक दूसरे का दुख समझते हैं, कठिन समय में साथ खड़े होते हैं, और अपने मतभेद होने पर भी संवाद का रास्ता उनको चुनते हैं तो वही समाज वास्तव में समृद्ध कहलाता है।
0: बिल्कुल।
1: आज आवश्यकता कशिश इस बात की है कि हम हर बहस में अपनी जीत साबित करें, बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम रिश्तों को हारने न दें। हर व्यक्ति अपने भीतर कोई ना कोई संघर्ष लेकर चलता रहता है। किसी के चेहरे की मुस्कान के पीछे अनगिनत चिंताएं होती हैं, किसी की चुप्पी के पीछे गहराई वाला दर्द छिपा होता है। इसलिए किसी के व्यवहार को देखकर तुरंत निर्णय लेने के बजाय उसके जीवन की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ अगर बात करें दोस्तों, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि प्रकृति से दूरी भी आज हमारी बढ़ रही है। जैसे कि प्राकृतिक वातावरण जो है वो मन को शांत करता है अंजलि जी, लेकिन आधुनिक जीवन शैली में लोग खुली हवा, पेड़ पौधों और प्राकृतिक परिवेश से दूर होते जा रहे हैं।
1: जी जी।
0: जिसका प्रभाव मानसिक संतुलन और भावनात्मक स्वास्थ्य पर सीधा सीधा देखने को मिल रहा है। ऐसे में हमें अपने बच्चों पर भी बढ़ते हुए प्रभाव का ध्यान रखना है। जैसे कि बच्चे अपने आसपास हमेशा क्रोध, अपमान और असहिष्णुता देखते हैं, तो वे उसी व्यवहार को सामान्य मानने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए आने वाली पीढ़ी को संवेदनशील बनाना परिवार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी कुछ बातें हैं जो बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम हर बहस में अपनी जीत साबित न करें,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि आवश्यकता इस बात की है कि हम रिश्तों को हारने न दें। जब हम अपने बच्चों को केवल कशिश सफल बनने की शिक्षा देते हैं लेकिन दयालु बनने की नहीं, तो हम भविष्य को ऐसी पीढ़ी की ओर तैयार कर रहे हैं जो आगे बढ़ना तो जानती है लेकिन किसी गिरे हुए व्यक्ति को उठाना नहीं जानती। इसलिए परिवार, विद्यालय और समाज तीनों की जिम्मेदारी है कि वे अगली पीढ़ी को संवेदनशीलता, सहिष्णुता, क्षमा, सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों से उन्हें जोड़े।
1: जी
0: याद रखिए कि परिवर्तन किसी बड़े अभियान से नहीं आता है श्रोता साथियों, बल्कि छोटे छोटे व्यवहारों से शुरू होता है। एक मधुर शब्द, किसी की बात ध्यान से सुन लेना, गलती होने पर क्षमा मांग लेना, किसी परेशान व्यक्ति का हाल पूछ लेना या बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर देना, ये छोटे कदम ही समाज में विश्वास को अपनापन लौटाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसा वातावरण बनाए श्रोता साथियों जहाँ क्रोध की जगह संयम, कटुता की जगह स्वाद, उदासीनता की जगह संवेदनशीलता और स्वार्थ की जगह सहयोग को महत्व मिले। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की करुणा को जीवित रखता है तब केवल उसका जीवन ही नहीं बदलता बल्कि उसके आसपास का पूरा समाज भी सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने लगता है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमें ऐसा समाज बनाना है जहाँ शब्दों से अधिक व्यवहार बोले, मतभेद से अधिक मानवीय संबंध मजबूत हो और हर व्यक्ति दूसरे के सुख दुख को अपना समझे।
1: जी
0: हाँ, सच्ची सामाजिक चेतना है और यही मानवता का आधार है और यही हमारी सबसे बड़ी सामूहिक शक्ति भी है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि समाज की पहचान उसकी ऊंची इमारतों, आधुनिक तकनीक या आर्थिक प्रगति से नहीं होती, बल्कि उसके लोगों के व्यवहार और संवेदनशीलता से होती है।
0: जी जी,
1: जिस दिन साथियों किसी अनजान व्यक्ति का दर्द हमें अपना दर्द लगने लगे, जिस दिन मतभेद के बावजूद हम सम्मान पूर्वक संवाद करना सीख जाएं,
0: जी हाँ,
1: और जिस दिन क्रोध पर विवेक की विजय होने लगे श्रोता साथियों, उसी दिन एक बेहतर समाज की शुरुआत होगी। याद रखिए, आक्रोश क्षणिक शक्ति को भ्रम देता है लेकिन संवेदना स्थायी विश्वास और रिश्तों की नींव जरूर बना देती है। क्रोध लोगों को दूर करता है जबकि करुणा उन्हें जोड़ती है। अंजलि जी,
0: जी हाँ,
1: इतिहास ने हमेशा उन्हीं व्यक्तियों और समाजों को याद रखा है साथियों जिन्होंने शक्ति के साथ साथ मानवता को भी महत्व दिया। तो ऐसे में आज से हम सब मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि प्रतिक्रिया देने से पहले विचार करेंगे,
0: बिल्कुल,
1: निर्णय लेने से पहले समझेंगे और किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसके एक क्षण के व्यवहार से नहीं बल्कि उसकी पूरी परिस्थिति को जानने के बाद ही करेंगे। दोस्तों, यदि हर व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा सम्मान, थोड़ी सी संवेदना जोड़ दे अंजलि जी, तो समाज में बड़ा परिवर्तन लाने की किसी की जो क्रांति है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसी उम्मीद के साथ श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान ये नहीं है कि हमारे पास कितना ज्ञान है, बल्कि ये है अंजलि जी कि दूसरों के दर्द को महसूस करने की हमारी क्षमता कितनी जीवित है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: बिल्कुल,
0: विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें ऐसा लगा, उसके लिए वो हमें राय सुझाव भेज सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार साथी। दोस्तों आपको छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

0: सांबुनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है मानी दुआ पितानी उम्मीद निसोरनी मुस्कान
1: होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो हेलमेट पहरो सीट बेल्ट लगाड़ो एक नानी सी सावधानी हेती जिंदगी बचाड़ी लेगा
0: सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है। तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9460051234। तो श्रोता साथियों अब हम हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहले फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है दिलवाले। गीत के बोल हैं, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। इस गीत की फरमाइश करता है जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुभान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज मुलानी, दिलशाद मुलानी, चाचा चाची जी और मुलानी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। इसे भी जुड़ना चाह रही हैं बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा और कुश जी मुणत। मस्तानपुरा से जुड़ना चाह रही हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतना भगत, सुलोचना जी भगत और भी श्रोता साथी जुड़ रहे हैं। भागपत से आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काफ अली खान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सिद्धिर न्यूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। दिल्ली से जुड़ना चाह रहे रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने कुमार सोनू की आवाज में बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है दीवाना, गीत के बोल ही इसी दीवानगी। इस गीत की फरमाइश करते हैं सुनीता सिंधी, यशरा सिंधी, प्रशांत सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़के जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू जी। इस गीत के अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बेबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ रहे हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जाधव, एकता जी जाधव और संगीता जी जाधव। इसे भी जुड़ना चाह रही कोकाबलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अजित कुमार जंगेल, आरुषि जंगेल और नंदिनी जी जंगेल। सुकरी कला से जुड़ रहे हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जी जंगेल और अंजलि जी जंगेल। इस गीत के अनुरोध करता है महाराष्ट्र से संतोष भाड़ की सुकन्या, सुनियाना, सरिता जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं ऐसी दीवानगी। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंजडुडवारा से। फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। इस गीत की फरमाइश करता है शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे जनकपुरी, सहारनपुर सी, जोन डिकिस्ट्रो, रोजी डिकिस्ट्रो, पॉल डिकिस्ट्रो, विलेज डिकिस्ट्रो। इस गीत के अनुरोध करता है मुगलपुरा भागपत सी, अब्दुल सत्तार अब्बासी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश सी, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। सलार पलगाम कश्मीर से जुड़ रहे हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजनुद्दीन, केसरुद्दीन जी। सिंधी से जुड़ना चाह रहे हैं सुरेश मालोदी, वर्षा मालोदी, श्रद्धा मालोदी, मानसी मालोदी। इस गीत के अनुरोध करता है मजनू का टीला सी, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। सतना एमपी से जुड़ रही उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माहेजी मलिक। इस गीत के अनुरोध करता है छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ शाहू, पंकज शाहू, तिरुपति जी शाहू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह, शिवांगी जी धाकड़। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है अभिमान। गीत के बोल हैं, लूटे कोई मन का नगर बनकर मेरा साथी। इस गीत की फरमाइश करते हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और हिमांशी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मी मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़ रहे हैं पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, डुग्गू सिक्का, भाविका जी सिक्का। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रसाद वर्मा, मुरली अमित जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवत श्रीमान, श्रीमती करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, आयुषी श्रीवास। बेलतारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो, मानस जी राज। गाजियाबाद से जुड़ना चाह रहे हैं शिषपाल जी। यतला महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, शिवप्रसाद जयसवाल, अपन्नम जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, राखी जी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं गंजडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां, सिफा सिमरन, मोहम्मद फेक जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, लूटे कोई मन का नगर बनकर मेरा साथी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कुंभार गली कुलगांव से। फिल्म का नाम है मुकंदर का सिकंदर, गीत की बोल है ओ मेरे साथी रे। इस गीत की फरमाइश करता है पांडु चंदन, उषा चंदन, रानी चंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग जी कुंभार। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे सहारनपुर से समित मशरूम, साइना हसन, आगसा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सदाम जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी और ईशान जी चीपा। सदर बाजार मारवाड़ भिलाड़ा राजस्थान से जुड़ रहे हैं रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। इस गीत की अनुरोध करता है रायगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र जी डांगी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़ी, वकील वाल्मीकि धाड़ी, नीनाजी धाड़ी, सप्रिल जी धाड़ी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल है ओ मेरे साथी रे।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिहार कॉलोनी दिल्ली से। फिल्म का नाम है वारिस। गीत के बोल है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत की फरमाइश करता है तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रजिता खुराना, केशु खुराना, रिधांजी खुराना। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहानवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फुरुद्दीन अब्बासी, सुहानजी अब्बासी, अरजहानजी अब्बासी, अभानजी अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हिमांश कुमार चंदन। इस गीत के अनुरोध करता है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद मारवाड़ से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, सानवी देशमुख, हर्षिता देशमुख। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है वारिस। गीत के बोल है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत की बोल थी, मेरे प्यार की उम्र हुई इतनी सनम। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है गंज जुड़वारा से। फिल्म का नाम है आशा, गीत की बोल है शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद यान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही जी और भी श्रोता साथ जुड़ना चाह रहे। झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, लाडली और निशा जी। पत्रों से जुड़ना चाह रहे हैं विजय अंबाटेकर, सुनीता अंबाटेकर, अक्षय अंबाटेकर, राधिका अंबाटेकर, ऋषिकेश जी अंबाटेकर। नवाशहर पंजाब से जुड़ रहे हैं गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बेबी वामिका वानी जी थांदी। बक्सर बिहार से जुड़ रहे हैं सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, सुरित रमेश शाहू जी। बिहार से जुड़ना चाह रहे हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अलीबा, दानिश जी अंसारी। बक्सर से और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य। बक्सर से जुड़ रहे हैं राज एडी अंसारी, आसमा खातून जी अंसारी। भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही शीशा हो या दिल टूट जाता है। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है बेताब, गीत के बोल हैं बादल यूं ही गुजरता है। इस गीत की फरमाइश करता है हिमकेश्वर शाहू, करण राहुल शाहू, चंपाजी शाहू। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे, झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत जी। इस गीत के अनुरोध करता है मरहरा सी, नसीह अब्बासी, सेहनाज अब्बासी, सवेद हसन अब्बासी, सहेली असम अब्बासी और रसीद वासी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं कुंभार गली श्री रामपुरशी, अशोक दली, सविता दली, अनिकेत दली, रोहिणी दली, ऋषिकेश दली, जीविका दली, सानिका दली। पूनावली पुणे से जुड़ रहे हैं अजय सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने, विशाखा सोनू ने जी। नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर। मलकापुर से जुड़ रहे हैं नारायण इगली, सोपान इगली, आशीष मेहकर जी। सदर बाजार कुरावली से जुड़ना चाह रहे हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, नितिन कुमार वर्मा, सोनम जी वर्मा। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। इस गीत के अनुरोध करता है जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं बादल यूं ही गुजर जाता है। फिल्म का नाम है बेताब। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी हमारे साथ सुबह 11 बजे से बने हुए हैं और सुन रहे हैं ढेर सारे फरमाइश के गीतों को, तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ। जैसा कि सिलसिला सुबह 11 बजे से साथियों हमारा आपके साथ बना हुआ था, जिसे आप सुन रहे थे प्रस्तुतकर्ता मनीषा पटेल के साथ में, और इसे आप आगे सुनने वाले हैं मेरे साथ यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में। तो दोस्तों फरमाइशों के सिलसिले को यूं ही जारी रखते हुए मैं बढ़ती हूं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है श्रोता साथियों दिल वाले। गीत के बोल हैं जीता था जिसके लिए। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में सुरेंद्र सानू, अनिता सानू, रोहित सानू, रितेश सानू, शिक्षा प्रतीक्षा मेघ जी और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं मधुबनी बिहार से। शबीर परवाना, माइज अली जी, जाहिद अली जी, शाहिद अली जी। श्रीरामपुर से अशोक कुमार, अविका, जीविका, सानू कुमार, अर्चना कुमार। पूनावले से अजय सोनवानी, करिश्मा सोनवानी, अविका, सायशा सोनवानी, विशाखा मंगलकर जी। आजाद नगर अक्सर हरिद्वार से हैं ताजमुद अंसारी, गुलाम शाबिराही, मेराज जहां। जुड़ना चाह रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संधि गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईश्वित शर्मा, किरण ठाकुर, हरिपाल कौर जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं टापकेल और अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर। यवतमाल से हैं निशा रानी नागरिकर, नेश नागरिकर, आरा वर्पिता जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जीता था जिसके लिए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। जैसा कि फरमाइश का गीत बहुत ही प्यारा सा था श्रोता, प्यारा था श्रोता साथियों, हम सुन रहे थे दिलवाले फिल्म का गीत जीता था जिसके लिए मरता था। यह गीत कुमार सानू जी और अलका याग्निक जी द्वारा गाया गया था श्रोता साथियों। इसी बीच अगली फरमाइश के गीत की ओर बढ़ते हैं। अगली फरमाइश का गीत है साथियों डाबके रोड अकोला से आया है। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया। गीत के बोल है आजा शाम होने आई। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर, यवतमाल से हैं निशा रानी नागरिकर, नीलेश नागरिकर, आरावर पिताजी, पोटा कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं, आकोट से हैं विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम बेंडे, विजय जी, पवन जरिया, संजीव डाबीराव जी। बरवट वकाल बुल्ढाणा से हैं नारायण हांगे, कमल हांगे, दिव्या हांगे, जय हांगे जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महतरे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय डहुल, बीपी कुलथे जी। मरियाव जौनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं इरशाद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इशरा, अजरा तबस्सुम जी। बनारस से जुड़ रहे हैं अब्दुल मजीद अंसारी, नौसिन असनानी, मोहम्मद काफिया अंसारी जी। राहुल नगर अमरावती से हैं सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेंडे जी, प्रेम प्रसिद्धि, महेश रोमटके जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं आजा शाम होने आई। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

पहला नोट से है नरेंद्र शर्मा, किरण नितिन, मयंक शर्मा। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। नाम बताना चाहूंगी, राजस्थान से हैं भाई प्रेम सिंह वडवाल, सुखवीर रखवीर वडवाल, काजट वडवाल, रखवीर वडवाल, रानो कृष्णा, श्रीमती छिंदु, प्रवीण शीतन, नवीन अंगीना, निशान अनमोल, प्यारा बेटा, चटको मटको, महावीर, गीता मलकर, सुखचैन सिंह भूटान, धर्मवीर सिंह बुक, अजित कसाना, माया देवी, रितिका आदित्य कसाना, लदावली मुदादाबाद से हैं ये। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं रामशन विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजूर रजना बंदरना और प्रिया दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। कॉपर गांव से हैं पेंटर मतिन मसूदा, दिया दानिश खान जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मैं अगर कहूँ, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है राजकोट से। फिल्म का नाम है श्रद्धा साथियो, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, गीत के बोल हैं पास वो आने लगे जरा जरा। फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूँगी, राजकोट से हैं मधुसूदन भट्ट जी, आरती प्रयागराज भट्ट जी, जस्मीन जी और आरती भट्ट जी, मधुसूदन भट्ट जी और भी दोस्त हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। नाम बताना चाहूँगी दोस्तों आप सभी को, सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश वर्मा। हमारे और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र से रुपेश संगी, महेश प्रगेश, प्रीतेश संगी, पूरा संगी परिवार। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर जी, पुनाराम देवांगन, कृष्णा देवांगन जी। अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटे, वनना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। तो आइए साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस प्यारे से गीत के साथ में। गीत के बोल हैं पास वो आने लगे जरा जरा। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और मनोरंजन कीजिए नए नए फरमाइश गीतों के साथ में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से बहुत ही अच्छा चल रहा है, ढेरों फरमाइशें आ ही रही हैं और फरमाइश के गीत भी बहुत ही मनोरंजन चल रहे हैं। श्रोता साथियों, गीतों के साथ हम ढेर सारा मनोरंजन कर रहे हैं, इसी बीच बढ़ते हैं फिर से अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है करेली बरेली से। फिल्म का नाम है साथियों बताना चाहूंगी आशिकी। गीत के बोल है दिल का आलम। फरमाइश करता जुड़ रहे आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, नरसिंह अंसारी, शमा अंसारी जी, महेंद्र अंसारी जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे लगन पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशा निमित आहूजा जी। संभाजी नगर छत्रपति से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदेव राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं दिल का आलम। तब तक आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत है मलयान सरधना मेरठ से। फिल्म का नाम है साथियों बताना चाहूँगी मोहब्बतें, दिल है तुम्हारा। गीत के बोल है मोहब्बत दिल का सुकून है एतबार। इस गीत को आवाज़ दी अलका याग्निक जी और उदित नारायण जी ने। फरमाइश करता है अनिल जैन, सीएम जैन, मुस्कान मास्टर जी, वेम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन और भी दोस्त जुड़ रहे हैं। अस्तापुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, जबीगम अंसारी, सादिक अंसारी, गाजीपुर से आज़ाद अली इरविन, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आज़ाद, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा, अमरावती से हीरामन शिंदे, शीला देवी शिंदे, सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने जी, गंजुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नाजी शेख, दानिश शेख, अमना फरीदी, राधा नामदेव जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है मोहब्बत दिल का सुकून है।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की। और अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, राजेंद्र गांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है श्रुता साथियों दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और गीत के बोल है मेरे ख्वाबों में जो आए। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने, और फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल समीक्षा, बेबी आराध्या साहू और भी साथी जुड़ रहे हैं इसी गीत के साथ में। शिवाजी नगर वाले देशमुख से राजेश खोबरखेड़े, शिवसागर खोबरखेड़े, इंद्राबाई खोबरखेड़े, चंकुली ताई खोबरखेड़े, बुलढाणा से दीपाली रामधाड़े, स्वराज रामधाड़े, अमरावती से सुनन्ना पवन भोंडे, तनुज पवन भोंडे जी, तेलीपारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष श्रीवास, विवेक शिवास, बेबी आशीष श्रीवास, छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनित राज, सुमित सोमो मानस राज, नेहरू चौक पैटर्न से सुरेश यादव, अनिता जाधव, आरती प्रसाद, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, सोमनाथ जाधव, गीता सुभाष चंदन, एकनाथ जाधव, जवाहरनगर दुर्ग से हैं आरसी कामड़े, करुणा मीना, अशिल विपुल कामड़े जी, करेली बरेली से हैं आरिफ हुसैन अंसारी, अलीशान अंसारी, अजलमा अंसारी जी, और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं, रंजन साहू, चन्नूलाल श्रीवास, नेहा निशा नामदेव, नंदिनी नामदेव, हेमंत नामदेव, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं ये। चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजी योगिता श्रीवास, रंजन शाहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को। आपको बताना चाहूंगी सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पुन्नू वड़तकर जी। जुड़ना चाह रहे हैं पाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वेदही जोशी, हंसिका जोशी, मनीष वर्मा, रेहान खान, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, अंकिता जोशी जी। इसी बीच साथी और भी हैं जो इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। गढ़वाल से हैं उमा सिंह, महेश्वरी देवी, सोनू मनु, राहुल, रश्मि, प्रियंका, सृष्टि, बन्नी, आरुष, सूर्य, दिनेश जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं मेरे ख्वाबों में जो आए। आपको बताना चाहूंगी कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

साथियों, ये थी हमारी आज की सभा जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को भुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगे आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे मीठी यादें, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं। इसी के बाद दोस्तों, शुरू होगा हमारा विशेष प्रेरणादायक कार्यक्रम सपनों की उड़ान, जिसमें आप जानेंगे साथियों नए नए प्रेरणादायक विषयों के बारे में और हमारी सपनों की उड़ान के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़ियां सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: आज के सुविचार।
1: आप सबने बरगद के वृक्ष को तो देखा ही होगा, क्या आपको ज्ञात है बरगद के वृक्ष के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, परंतु बरगद का वृक्ष संसार के महाकाय वृक्षों में जाना जाता है। जब उसका जन्म होता है तब उसमें वो जटाएं, वो शाखाएं नहीं होती, परंतु जैसे जैसे उसका विस्तार होता है, जैसे जैसे वो अधिक शाखाओं का भार उठाता है, अधिक पत्तियों का सृजन करता है, वैसे वैसे उसकी शाखाएं जटाएं बनकर जड़ तक पहुंचती है और इस वृक्ष को सहारा देती है। ये जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पथ है। बिना लोभ लालच शुभ कार्य कर अन्य लोगों की सहायता करें। धीरे धीरे आपने जिनकी सहायता की वो आपके सहायक बनते जाएं, आपकी जड़ों को और बलशाली बनाएंगे, आयु मान और आकार बढ़ाएंगे। सहजीवन, सहायता और निष्काम कर्म आपको मृत्यु के पश्चात भी मरने नहीं देगा, आपको अमर रखेगा। हमारा शरीर प्रकृति का एक महान आविष्कार है। इससे जटिल संरचना संसार में और कोई नहीं। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं, जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथने दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल एक दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। क्योंकि अधिक वाचाल नाश को निमंत्रण देता है। स्मरण रखिएगा,

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है कि आज का युवा सचमुच स्वतंत्र सोच रखता है या भीड़ का अनुसरण करता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ये कहना चाहेंगे कि युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। जैसा कि हम बार बार बताते हैं, उनके विचार, उनके निर्णय और उनके सपने ही समाज और देश का भविष्य तय करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: युवा अवस्था वो समय होता है कशिश, जब हम अपनी पहचान बनाते हैं, अपने विचार विकसित करते हैं और जीवन की दिशा को तय करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन श्रोताओं, आज के डिजिटल युग में एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने ये खड़ा है कि आज का युवा वास्तव में अपनी स्वतंत्र सोच के आधार पर निर्णय लेता है या फिर वो भीड़ के पीछे चलने को ही अपनी सफलता का रास्ता मान बैठता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इन्हीं प्रश्नों के उत्तर आज हम कार्यक्रम के माध्यम से जानने वाले हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना युवा साथियों को पहले एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन हम यहाँ पर करवाएं।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि आज के युवा सचमुच स्वतंत्र सोच रखते हैं या भीड़ का अनुसरण करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: अगर जागृति जी यहाँ पर सबसे पहले स्वतंत्र सोच के महत्व को हम जाने तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वतंत्र सोच का अर्थ केवल दूसरों से अलग सोचना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब है तथ्यों के आधार पर निर्णय लेना, सही और गलत के बीच अंतर समझना, साथियों किसी बात को बिना सोचे समझे स्वीकार न करना और अपने विवेक का उपयोग करना, साथ ही भीड़ के दबाव में आकर अपने सिद्धांत न बदलना। देखते हैं जागृति जी की स्वतंत्र सोच रखने वाला व्यक्ति दूसरों की बात सुनता अवश्य है, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से करता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। और स्वतंत्र सोच यानी कि किसी भी विषय पर स्वयं विचार करना, तथ्यों को समझना और फिर अपना निर्णय लेना। श्रोताओं, स्वतंत्र सोच रखने वाले व्यक्ति केवल इसीलिए किसी बात को नहीं मानते क्योंकि बाकी लोग उसे मान रहे होते हैं
0: जी।
1: वो हर बात को तर्क और वितर्क के साथ रखते हैं। इतिहास गवाह है कशिश की दुनिया में जितने भी बड़े महान परिवर्तन हुए हैं वे स्वतंत्र सोच रखने वाले लोगों के कारण ही संभव हो पाए हैं।
0: बिल्कुल,
1: जिन्होंने भीड़ से अलग सोचने का साहस किया वही समाज में नई दिशा देने में सफल हुए। अगर हम सभी लोग केवल दूसरों का अनुसरण करते रहते तो विज्ञान, शिक्षा, कला और समाज सुधार के क्षेत्र में इतनी प्रगति कभी भी नहीं हो पाती।
0: बिल्कुल,
1: आज हम देखते हैं कि आज का युवा पहले की तुलना में बहुत अधिक शिक्षित है, जागरूक है और तकनीक से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने उसे पूरी दुनिया से जोड़ दिया है। अब जानकारी प्राप्त करना पहले से और अधिक आसान भी हो गया है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हमारे आज के युवा कई विषयों पर अपनी राय भी रखते हैं, वो सामाजिक मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं, नई तकनीकों को अपनाते भी हैं और अपने करियर के लिए नए विकल्प भी चुनते हैं।
0: बिल्कुल,
1: अनेक युवा ऐसे हैं जो पारंपरिक रास्तों को छोड़कर स्टार्टअप, सामाजिक कार्य, नवाचार और रचनात्मक क्षेत्रों में अपना भविष्य भी बना रहे होते हैं और ये स्वतंत्र सोच का ही परिणाम होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही अगर भीड़ का अनुसरण करने वाली प्रवृत्ति की हम बात करें तो जैसा कि आज सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, उन्हें क्या पहनना है, कैसा दिखना है, कौन सा मोबाइल लेना है, किस तरह की लाइफस्टाइल अपनानी है और किस विषय पर राय रखनी है, इनमें से कई बातें अब व्यक्ति स्वयं तय नहीं करता।
1: बिल्कुल,
0: बल्कि चल रहे ट्रेंड तय करते हैं जागृति जी। यदि कोई वीडियो वायरल हो जाता है साथियों तो लाखों लोग बिना सोचे समझे उसी की नकल करने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: और यही भीड़ की मानसिकता है। हम देखते हैं कि सोशल मीडिया एक शक्तिशाली माध्यम है, यह ज्ञान भी देता है और भ्रम भी फैलाता है।
1: जी हाँ,
0: समस्या सोशल मीडिया नहीं है साथियों, समस्या तो यह है कि हम उस पर देखी गई हर बात को सच क्यों मान लेते हैं। कई बार अधूरी जानकारी, झूठी खबरें और भ्रामक वीडियो भी तेजी से फैल जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में यदि युवा बिना जांचे परखे उन्हें आगे बढ़ाते हैं तो ये स्वतंत्र सोच नहीं बल्कि भीड़ का अनुसरण होता है जागृति जी।
1: जी हाँ कशिश, और इसी के साथ हम कहना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को कि आज भी बहुत सारे युवा अपने करियर का चुनाव अपनी रुचि के अनुसार नहीं करते कशिश,
0: बिल्कुल,
1: बल्कि समाज या मित्रों की पसंद के आधार पर करते हैं। अगर किसी क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग जा रहे हैं तो वे भी उसी दिशा में पढ़ने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: कई युवा साथी केवल इसीलिए किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं क्योंकि उनके मित्र ऐसा कर रहे होते हैं। श्रोताओं, कुछ लोग केवल दूसरों को देखकर किसी पेशे का चयन कर लेते हैं जबकि उनकी रुचि किसी अन्य क्षेत्र में होती है, और हम देखते हैं कि वे फिर जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं कर पाते हैं। सफलता वही मिलती है जहां व्यक्ति अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार निर्णय लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वहां नहीं मिलती जहां हम भीड़ को देखकर कार्य कर रहे होते हैं।
0: जी हां जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम युवा साथियों से कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि हमारे जो युवा साथी हैं वो वर्तमान में स्वतंत्र सोच रखने के बजाय भीड़ का अनुसरण कर रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और पैरसी गीत के साथ में।
1: जी हाँ,
0: तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं और रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और हमारी बातें चल रही थी कि आज का युवा सचमुच स्वतंत्र सोच रखता है या भीड़ का अनुसरण करता है।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारे श्रोता साथियों से बातचीत रही थी स्वतंत्र सोच के महत्व के बारे में, आधुनिक युवा और अवसरों की दुनिया के बारे में, भीड़ का अनुसरण करने की प्रवृत्ति के बारे में, सोशल मीडिया के प्रभाव को लेकर।
1: जी जी।
0: और यही बात करते हैं करियर चयन में भीड़ मानसिकता को लेकर। जैसा कि इस पर भी हमने बात की थी कि कई लोग, कई युवा साथी ऐसे होते हैं कि वो लोगों को देखकर अपनी पसंद को पीछे रखकर उनके जैसा कार्य करने की कोशिश करते हैं, जिससे वो कभी जीवन में संतुष्ट नहीं हो पाते हैं।
1: जी जी।
0: श्रोताओं, स्वतंत्र सोच और जिम्मेदारी बहुत जरूरी है। स्वतंत्र सोच केवल अलग राय रखने का नाम नहीं है, इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। स्वतंत्र सोच रखने वाला व्यक्ति अपने निर्णयों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है। कशिश, वो सही और गलत के बीच अंतर समझने का प्रयास करता है। आज हम देखते हैं कि आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि युवा केवल विरोध करने या अलग दिखने के लिए अलग विचार न रखे, बल्कि तथ्यों और तर्कों के आधार पर अपनी सोच भी विकसित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: स्वतंत्रता का अर्थ अनुशासनहीनता नहीं है श्रोताओं, बल्कि जिम्मेदार निर्णय लेने की क्षमता है।
1: बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का दौर दिखावे का भी बनता जा रहा है। जागृति जी, कई बार व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति को नजरअंदाज करके केवल इसलिए महंगी चीजें खरीदता है क्योंकि दूसरे भी उस चीज को खरीद रहे होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि महंगे कपड़े, ब्रांडेड जूते, महंगे मोबाइल, लग्जरी लाइफस्टाइल। साथियों, यदि इन सबका उद्देश्य केवल दूसरों को प्रभावित करना है तो ये स्वतंत्र सोच नहीं है साथियों, बल्कि ये तो सामाजिक दबाव का परिणाम है।
0: जी हाँ।
1: हम देखते हैं कि हमें सकारात्मक भीड़ और नकारात्मक भीड़ के बीच अंतर समझना होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हर भीड़ गलत नहीं होती दोस्तों। यदि युवा मिलकर रक्तदान करें, पेड़ लगाएं, स्वच्छता अभियान चलाएं, गरीब बच्चों को पढ़ाएं और मतदान के प्रति जागरूक हो तो यह सकारात्मक सामूहिकता है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन यदि बिना सोचे किसी अफवाह, नफरत, ट्रोलिंग या हिंसा का हिस्सा बन जाए हमारे युवा साथी तो यह खतरनाक भीड़ मानसिकता बन जाती है। जागृति जी।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि स्वतंत्र सोच विकसित करने में परिवार और शिक्षा व्यवस्था की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर बच्चों को बचपन से प्रश्न पूछने, अपनी राय व्यक्त करने और विचारों पर चर्चा करने का अवसर दिया जाएगा तो उनमें आत्मविश्वास और स्वतंत्र सोच अपने आप ही विकसित हो जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: श्रोताओं, हम देखते हैं कि केवल रटने की बजाय चिंतन, विश्लेषण और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जब युवा स्वयं सोचने और समझने लगेंगे कशिश, तभी वे भीड़ के दबाव से मुक्त होकर सही निर्णय ले पाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि किसी भी देश का विकास केवल संसाधनों से नहीं चलता, बल्कि स्वतंत्र और जागरूक नागरिकों से होता है।
1: जी जी।
0: अगर युवा केवल भीड़ का अनुसरण करेंगे तो समाज में कभी भी नवाचार और परिवर्तन की गति कभी नहीं हो पाएगी और धीमी पड़ जाएगी। लेकिन यदि युवा स्वतंत्र सोच रखेंगे, नए विचार प्रस्तुत करेंगे और समस्याओं के समाधान खोजेंगे तो देश तेजी से प्रगति करेगा, समाज तेजी से प्रगति करेगा।
1: बिल्कुल।
0: आज हम देखते हैं कि भारत को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो सवाल पूछने का साहस रखे, सीखने की जिज्ञासा रखे और सकारात्मक बदलाव के लिए आगे आए।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि हम देखते हैं कि स्वतंत्र सोच व्यक्ति को आत्मविश्वासी बनाती है।
0: बिल्कुल।
1: सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है और नवाचार को बढ़ावा देती है। साथियों, दुनिया के अधिकांश महान परिवर्तन उन्हीं लोगों ने किए हैं जिन्होंने भीड़ से अलग सोचने का साहस दिखाया।
0: जी हाँ।
1: यदि युवा हमेशा भीड़ का अनुसरण करते रहेंगे तो इससे उनकी मौलिकता समाप्त हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: उनमें आत्मविश्वास की कमी देखी जाएगी, साथ ही युवाओं में मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है। और साथ ही उनकी रचनात्मक शक्ति जो है वो इससे प्रभावित होगी। जागृति जी।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमारे युवा साथियों को सबसे पहले हर जानकारी को सत्य मानने से पहले उसकी जांच करनी चाहिए, उसके बारे में पढ़ना चाहिए और अच्छे अच्छे पुस्तकों से उन्हें जुड़ना चाहिए। साथ ही प्रश्न पूछने की आदत को भी विकसित करना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों, दूसरों की सफलता देखकर निराश होने की बजाय हमें उनकी सफलता को देखकर प्रेरित होना चाहिए और उनकी आदतों को स्वयं में निखारना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: अगर हमारे युवा साथी ऐसा करेंगे जागृति जी तो न सिर्फ उन्हें सफलता मिलेगी बल्कि उनका भविष्य भी सुधरेगा।
0: बिल्कुल कशिश, हमें समझना होगा कि हर स्थिति में भीड़ का अनुसरण करना गलत नहीं है। कई बार अनुभवी लोगों की सलाह और समाज के सकारात्मक अनुभव हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम बिना सोचे समझे किसी का अनुसरण करने लगते हैं।
1: जी हाँ।
0: इसीलिए श्रोताओं, युवाओं को संतुलन बनाना चाहिए, उन्हें दूसरों के विचार सुनने होंगे, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक और समझ के आधार पर ही लेना होगा।
1: बिल्कुल।
0: यदि हम आज के युवाओं को देखें तो पाएंगे कि उनमें स्वतंत्र सोच की क्षमता भी है और भीड़ का अनुसरण करने की प्रवृत्ति भी है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ युवा अपने विचारों और निर्णयों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग सोशल मीडिया, फैशन और सामाजिक दबाव के प्रभाव में निर्णय लेते हैं। भविष्य उन्हीं युवाओं का होगा जो भीड़ में रहकर भी अपनी पहचान बनाए रखेंगे।
1: जी हाँ।
0: जो दूसरों की बात सुनेंगे लेकिन आंख बंद करके किसी का अनुसरण नहीं करेंगे, और जो अपने विवेक, ज्ञान तथा मूल्यों के आधार पर जीवन की दिशा तय करेंगे।
1: जी
0: हाँ। श्रोताओं, याद रखिए, भीड़ हमेशा रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मंजिल वही पाता है जो अपनी सोच से चलना सीखता है।
1: बिल्कुल जागृति जी। तो जैसा कि बात है आज के इस कार्यक्रम में हमारे युवा साथियों से हमारे ढेर सारी रही, और अब जैसा कि देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल, तो आइए साथी सुन लेते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़े ने आपड़े मई देखाय तो आपड़े ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावीसू। है
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राखंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करिएगा हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: आज कार्यक्रम का विषय है दादा दादी और नाना नानी का साथ बच्चों के विकास में कितना महत्वपूर्ण है। कशिश, हम देखते हैं कि समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है।
0: बिल्कुल।
1: पहले संयुक्त परिवार की रौनक बहुत हुआ करती थी। घर में बच्चों की हंसी के साथ दादा दादी और नाना नानी का अनुभव भी होता था।
0: जी हाँ,
1: शाम होते ही आंगन में कहानियां सुनाई जाती थी, जीवन के अनुभव बांटे जाते थे और बच्चों को प्यार के साथ संस्कार भी मिलते थे। आज परिवार छोटे होते जा रहे हैं, जीवन तेज हो गया है और कई बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से दूर रहकर बड़े हो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे में कशिश, यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या बुजुर्गों का साथ बच्चों के विकास में सच में इतना महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर है श्रोता साथियों, हाँ, और शायद पहले से कहीं ज्यादा अधिक भी।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: जी जी,
0: तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम एक प्यारा सा गीत यहाँ पहले सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय से रूबरू हम आपको करा ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि दादा दादी और नाना नानी का साथ बच्चों के विकास में कितना महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम जैसा कि देखते हैं कि बच्चे केवल किताबों से नहीं सीखते, वे अपने आसपास के लोगों को देखकर भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। साथियों
1: जी जी,
0: जैसे कि जिस घर में बुजुर्गों का स्नेह, धैर्य और अनुभव मौजूद होता है, वहाँ बच्चों का व्यक्तित्व अधिक संतुलित बनता है। साथियों, दादा दादी नाना नानी केवल रिश्ते नहीं होते, वे परिवार की जीवित धरोहर होते हैं और उनके अनुभव जो है वो जीवन की एक ऐसी पाठशाला है जो किसी किताब में नहीं मिलती। अंजलि जी
1: बिल्कुल यही श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि जब माता पिता काम में व्यस्त होते हैं तब दादा दादी बच्चों के लिए समय निकालते हैं। वे बच्चों की छोटी छोटी बातों को ध्यान से सुनते हैं, उनके सवालों का धैर्य से उत्तर देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और उन्हें बिना किसी जल्दबाजी के समझाते हैं।
0: जी हाँ।
1: यही समय होता है कशिश बच्चों के मन में अपनापन और सुरक्षा की भावना पैदा करने का।
0: बिल्कुल।
1: जिस बच्चे को ये महसूस होता है कि घर में कोई उसे बिना शर्त सुनने वाला है तो उसका आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, दादा दादी और नाना नानी बच्चों को केवल कहानियां नहीं सुनाते बल्कि उन कहानियों के माध्यम से जीवन के मूल्य भी सिखाते हैं। सत्य बोलना, मेहनत करना, दूसरों का सम्मान करना, धैर्य रखना, बड़ों का आदर करना, प्रकृति से प्रेम करना और कठिन परिस्थिति में भी हिम्मत न हारना, ये सब बातें श्रोता साथियों बच्चे के मन में धीरे धीरे बैठ जाती है और यही संस्कार आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की पहचान भी बनते हैं।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के डिजिटल युग में बच्चों का अधिकांश समय मोबाइल, टीवी या इंटरनेट के बीच बीत रहा है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में साथियों दादा दादी का साथ बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने का कार्य करेगा। हम देखते हैं कि वे बच्चों को पारंपरिक खेल सिखाते हैं, लोकगीत सुनाते हैं, त्योहारों का महत्व बताते हैं और परिवार की पुरानी यादों से भी परिचित कराते हैं।
1: जी जी
0: अंजलि जी, इससे बच्चों में अपनी संस्कृति और जड़ों के प्रति सम्मान विकसित होता है। साथ ही बुजुर्गों के साथ रहने वाले बच्चों में धैर्य और संवेदनशीलता अधिक देखने को मिलती है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, वे ये सीखते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी गति और अपनी जरूरत होती है। जब बच्चा अपने दादा दादी की सेवा करना सीखता है, उन्हें दवा ला कर देता है, उनका हाथ पकड़कर चलता है या उनके साथ बैठकर बातें करता है साथियों, तब उसके भीतर करुणा, जिम्मेदारी और इंसानियत के गुण विकसित होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और ये ऐसे गुण हैं अंजलि जी जो किसी पाठ्य पुस्तक से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से ही मिलते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम जान पा रहे हैं आज कार्यक्रम के माध्यम से कि दादा दादी का साथ बच्चों के लिए क्यों जरूरी है और उसके क्या फायदे हैं।
0: बिल्कुल।
1: ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से और भी हमारे श्रोता साथियों के साथ यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना हमारे साथियों को हम यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत सुनवा दें।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि कशिश, हमने गीत से पहले ढेर सारी बातों को जाना था, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि दादा दादी बच्चों के लिए भावनात्मक सहारा भी होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार बच्चे अपनी ऐसी बातें उनसे साझा कर देते हैं जो वह माता पिता से कहने में झिझकते हैं। इसका कारण ये होता है श्रोता साथियों कि बुजुर्ग बच्चों की बात बिना जल्दबाजी और बिना कठोर प्रतिक्रिया के सुनते हैं।
1: बिल्कुल,
0: उनका धैर्य बच्चों को खुलकर बोलने का साहस देता है और ऐसे रिश्ते बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: माता पिता के लिए भी दादा दादी का साथ एक बड़ी ताकत होता है। श्रोता साथियों, बच्चों की परवरिश केवल आर्थिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि भावनात्मक जिम्मेदारी भी है। जब परिवार में बुजुर्ग साथ होते हैं तो बच्चों को अधिक समय, अधिक स्नेह और अधिक मार्गदर्शन मिलता है। श्रोता साथियों, इससे माता पिता भी अपने काम और परिवार के बीच बेहतर संतुलन बना पाते हैं।
1: जी हाँ दिली जी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे कहना चाहेंगे कि आज कई परिवार नौकरी, पढ़ाई या अन्य कारणों से अलग अलग शहरों में रहते हैं। यदि अंजलि जी दादा दादी या नाना नानी साथ नहीं रह सकते तब भी रिश्ता कमजोर नहीं होना चाहिए। सप्ताह में कुछ दिन वीडियो कॉल करना, बच्चों को नियमित रूप से उनसे बातें कराना और छुट्टियों में उनके पास भेजना और परिवार की कहानियों से उन्हें जोड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल
1: साथियों, दूरी केवल किलोमीटरों की होनी चाहिए, दिलों की नहीं। हमें यह समझना होगा कि हर पीढ़ी की सोच अलग हो सकती है। कभी कभी माता पिता और दादा दादी के विचार में मतभेद होना स्वाभाविक है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यदि बच्चों के सामने एक दूसरे का सम्मान बनाए रखा जाए तो बच्चा भी सीखता है कि अलग विचार होने के बावजूद भी रिश्तों को कैसे निभाया जाता है।
0: जी हाँ,
1: साथ ही परिवार में सम्मान का वातावरण बच्चों के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव भी डालता है। अंजलि जी,
0: जी हाँ कशिश, आज समाज में बढ़ती अकेलेपन की भावना, तनाव और व्यवहार संबंधित समस्याओं के बीच बुजुर्गों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। श्रोता साथियों, उनका स्नेह बच्चों को भावनात्मक सुरक्षा देता है। उनके अनुभव बच्चों को सही गलत का अंतर समझाते हैं। उनका आशीर्वाद बच्चों के मन में आत्मविश्वास भरता है। इसलिए हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि बुजुर्ग केवल परिवार के बड़े सदस्य हैं। वास्तव में वे बच्चों के पहले जीवन मार्गदर्शक, संस्कारों के संरक्षक और अनुभवों के सबसे बड़े शिक्षक होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि किसी बच्चे को अपने दादा दादी या नाना नानी का साथ मिलता है तो वह केवल एक रिश्ते का सुख नहीं पाता कशिश, बल्कि जीवन को समझने का एक अनमोल अवसर भी पाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दादा दादी और नाना नानी का साथ बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि किसी भी बच्चे का भविष्य केवल अच्छी शिक्षा, महंगे स्कूल या आधुनिक सुविधाओं में नहीं होता।
0: बिल्कुल,
1: बल्कि उसके जीवन में मिलने वाले स्नेह, संस्कार और अनुभवों से आकार लेता है। अंजलि जी, दादा दादी या नाना नानी का साथ बच्चों को वही अनमोल विरासत देता है जिसे न तो किसी बाजार से खरीदा जा सकता है और न ही किसी पुस्तक में पूरी तरह पाया जा सकता है।
0: जी जी
1: दोस्तों, उनका जो जीवन है वह स्वयं एक खुली किताब की तरह होता है जिसमें धैर्य, संघर्ष, रिश्तों की अहमियत, त्याग, प्रेम और जीवन जीने की सच्ची कला छिपी हुई होती है।
0: जी बिल्कुल,
1: आज अंजलि जी जब परिवारों में व्यस्तता बढ़ रही है और बच्चों का बचपन मोबाइल, टीवी और इंटरनेट के बीच सिमटता जा रहा है तब बुजुर्गों की उपस्थिति बच्चों को वास्तविक जीवन से जोड़ने का काम करती है। वे बच्चों को ये सिखाती है साथियों की खुशियाँ केवल चीजों में नहीं बल्कि रिश्तों, अपनापन, साथ बैठकर बातचीत करने और एक दूसरे का सम्मान करने में भी मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: उनके साथ बिताया गया समय बच्चों के भीतर धैर्य, संवेदनशीलता और मानवीय मूल्यों का एक ऐसा बीज बोता है जो जीवन भर बच्चों को फल देता है।
0: बिल्कुल, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कशिश की यह भी सच है कि हर परिवार की परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती। कई बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी से दूर रहते हैं। ऐसे में दूरी को रिश्तों की दूरी नहीं बनने देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: एक फोन कॉल, एक वीडियो कॉल, छुट्टियों में साथ बिताए गए कुछ दिन या बच्चों को उनके जीवन के अनुभव सुनने का अवसर देना भी इस रिश्ते को जीवंत बनाए रख सकता है। बच्चों को यह एहसास होना चाहिए कि उनके परिवार में ऐसे लोग हैं जिनका आशीर्वाद, अनुभव और स्नेह हमेशा उनके साथ है। श्रोता साथियों, हम अपने बच्चों को केवल आधुनिक जीवन की दौड़ में आगे बढ़ना ही अपना लक्ष्य न बनाएं, बल्कि उन्हें ऐसे रिश्तों से भी जोड़ें जो उनके चरित्र को मजबूत, मन को शांत और जीवन को समृद्ध बनाते हैं। क्योंकि जिस बच्चे को अपने बुजुर्गों का सानिध्य मिलता है वह केवल परिवार का इतिहास नहीं जानता बल्कि भविष्य को बेहतर बनाने की समझ भी विकसित करता है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि दादा दादी और नाना नानी घर के ऐसे बरगद हैं जिनकी छाया में बचपन सुरक्षित, संस्कारों से समृद्ध और जीवन मूल्यों से परिपूर्ण बनता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम चाहते हैं दोस्तों कि आने वाली पीढ़ी केवल सफल ही नहीं बल्कि संवेदनशील, जिम्मेदार और संस्कारी भी बने, तो हमें बच्चों और बुजुर्गों के बीच के इस अनमोल रिश्ते को समय, सम्मान और अपनापन देकर सहेजना होगा।
1: जी जी,
0: यही रिश्ता परिवार को मजबूत बनाता है, समाज को संस्कार देता है और आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी है, हमने जाना कि किस प्रकार से जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दादा दादी या नाना नानी होते हैं वो बच्चों के विकास में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो बातें जैसा कि पूरी हो चुकी है, समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल।

0: आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल।
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हम रेडियो हो आपड़ो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनु घणेमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जिम के भाई बोनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बोनो आज अमारी कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है की जैविक खेती ने माध्यम तक अपने अपने खाद्य सुरक्षा ने हरते सुनिश्चित करी सका। तो भाई बोनो अड़ा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना कनी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले अपने हमरा विदांगित मोरे कर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमारे रहो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: बहन बनु गीता ऐसे पूर्व नर्ण गीत बात एक वक्त फिर आप सबनों हनुमान स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज के कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की बहन बनु अमे अपने गीत के पहले विषय बताड़ू तू के आज आप बातचीत करवा वाला हूँ कि जैविक खेती ने माध्यम ते की हरते अपने अपनी खाद्य सुरक्षा ने सुनिश्चित करी शकाओ। तो अन्य विषय माते बातचीत करवा बल्ले आज आप कार्यक्रम ते की जुड़ी रही सोहन जी। तो सब तक पहले अपना हमरी लड़ना नहीं वातन मोरे करा अपनी बातें। सर नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद
0: सर। जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम खेतीवाड़ी से जुड़ रहे हैं और आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है कि हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो जैविक खेती के माध्यम से अपनी खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, जैसा कि आपने शुरुआत में ही इस चीज को बताया है कि हम जैविक खेती से हमारी खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, तो बिल्कुल जैविक खेती है।
0: बिल्कुल।
1: और जैविक खेती पहले तो क्या है और ये हमको
0: जानने की जरूरत है। बिल्कुल।
1: और ऐसी खेती जिनमें जैविक प्रक्रियाएं जो है वो निरंतर कार्य करती है और ये जैसा कि देखा जाए तो उसमें चाहे तो आप जैविक प्रक्रिया से जो भी खेती होगी उस खेती को हम जैविक खेती मानते हैं अक्सर। अब जैविक प्रक्रिया में जो आ गया कि आपका जो जिंदा चीजें हैं तो गाय भैंस बकरी है ना, तो इनका पहले जानवर का उपयोग, फिर हम जो वातावरण में देखेंगे कि दूसरा जो घटक है उसमें कि पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का उपयोग है ना। पेड़ पौधों का उपयोग अगर हम देखा जाए तो सीधे तौर पे एक तो पशु उसको खाता है और फिर वो जो गोबर बनाता है तो वो खाद के रूप में हम
0: काम में लेते हैं। बिल्कुल।
1: इसके अलावा जो मूत्र विसर्जन जो पशु करते हैं उनका उपयोग भी हम खाद बनाने में या दवाइयां बनाने में करते हैं, या एक तरह से वातावरण से हम अलग अलग तरीकों से बिना रासायनिक का उपयोग करके जो भी खेती हम करते हैं या खेती करने के लिए जो सहायक तरीके हैं वो तरीके हम उपयोग में लेते हैं, तो वो सारे ही जैविक खेती के तरीके हैं या उनको कहते हैं कि ये जैविक खेती हम कर रहे हैं जिसमें बिल्कुल भी रसायन का उपयोग नहीं होता है।
0: बिल्कुल।
1: अब एक उदाहरण के तौर पे हम इसको समझते हैं कि जैविक खेती के में जैसे कि मान लो कि उसके लिए उपयोगी क्या है। उपयोगी पहले तो जरूरत, खेती की जरूरत क्या है, हमको खाद चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: बीज चाहिए, पानी चाहिए और हमारे जो भी कीट या रोग है उनका प्रबंधन चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: है ना, तो ये हमको चाहिए। दूसरा जो है उसमें काम करने के लिए हमको बाहरी मशीनों का भी प्रयोग कम से कम होना चाहिए
0: जी जी,
1: इसके लिए तो ये हमको मुख्य मुख्य चीजें
0: ध्यान में रखने की जरूरत है।
1: अब खाद के लिए हमको जो है पशु का खाद है वो उसका हम उपयोग करेंगे। पशु का खाद को बेहतर बनाने के लिए जो तरीके हैं वो हमको उपयोग करने चाहिए, जैसे जैविक तरीके हैं उनमें वर्मी कंपोस्ट है या हमारा उकेड़ा खाद है उसको सड़ा के सीधे तौर पे हमको डायरेक्ट जो है वो हमको खेत में नहीं डालना है, उसको एक प्रक्रिया से गुजरने के बाद में अगर हम उसको खेत में डालेंगे तो वो ज्यादा प्रभावी तरीके से काम करेगा।
0: बिल्कुल।
1: तो वर्मी कंपोस्ट हो गया, कंपोस्ट हो गया, या उसकी और अगर हम उसमें जाएंगे आगे तो जैसे कि जीवामृत हो गया, घन जीवामृत हो गया, तो इस प्रकार की बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं तो उनसे अच्छा हम खाद बना सकते हैं। इसके साथ ही देखेंगे हम तो बीज, तो बीज भी हमको ये देखना पड़ेगा कि हम कौन सा बीज का उपयोग कर रहे हैं। बीज का उपयोग हमको हमारे यहाँ की परंपरागत बीज जो है उनका उपयोग हमको करना चाहिए उसमें
0: जी जी।
1: और इसके पीछे क्या है कि परंपरागत जो फसलें हैं हमारी वो हमारी वर्षा के हिसाब से, हमारा वातावरण के हिसाब से वो फसलें यहाँ पे जो है पुरानी समय से चलती आ रही है और यहाँ होती आ रही है, तो हमको उनको प्राथमिकता देनी चाहिए। अब उनको प्राथमिकता इसीलिए देनी चाहिए क्योंकि आपने एक बात करी थी खाद्य सुरक्षा
0: जी जी।
1: तो खाद्य सुरक्षा के लिए परंपरागत जो फसलें हैं हमारी वो बहुत ज्यादा जरूरी है
0: जी जी।
1: जो हमारी परंपरागत खेती है वो खाद्य सुरक्षा को लेके ही होती थी, क्योंकि उस समय जो है फसलों का व्यापार नहीं होता था, जो खेती होती थी वो खाने के लिए होती थी, है ना। परंपरागत खेती जो है उसका अगर हम बहुत सारे उदाहरण हैं, घर के पास में आपका सब्जियां उगाना, आसपास में छोटे से टुकड़े में, है ना, जिसको आजकल हम बहुत सारे नाम देते हैं, न्यूट्रिशन गार्डन, किचन गार्डन, पोषण बगिया, तो वो सारा वही जो परंपरागत तरीके से हमारे यहाँ होता आया है और वो खाद्य सुरक्षा के लिए ही हम करते थे ताकि हमारी बाजारी निर्भरता
0: कम हो।
1: इसके अलावा जो फसलें हम करते थे, क्योंकि जो हमारी फसलें होती थी, जो हम खाना खा रहे थे, वही हमारे शरीर को मजबूत बनाती थी और वही हमको ऐसा सक्षम बनाती थी ताकि हम दिन भर परिश्रम कर सके, कार्य कर सके। लेकिन धीरे धीरे धीरे बाजारीकरण आने से और बाहर का बीज आने से जो खेती बाड़ी है उसको पोषण की दृष्टि से नहीं देखते हुए व्यापार की दृष्टि से देखने लगे, और व्यापार की दृष्टि से जब देखने लगे तब उसमें जो है बाजारी चीजें आने लगी, ज्यादा उत्पादन के लिए हाइब्रिड बीज लाने लगे।
0: बिल्कुल।
1: और अगर रोग वहां होते थे तो उन्होंने जो है कीटनाशी का उपयोग करना चालू कर दिया, और इसके अलावा भी जैसे कि अब ज्यादा खेती करने लगे, ज्यादा उत्पादन लेने लगे, तो जैव प्रक्रिया का खाद है वो उनके लिए पूरा नहीं हो पा रहा
0: जी जी।
1: तो फिर वो रसायन खाद का उपयोग करने लगे, तो धीरे धीरे ये सारी जो रसायन है वो जमीन के अंदर गई और जमीन की जो जैव प्रक्रियाएं जो चलती है उनको उन्होंने डिस्टर्ब किया, और डिस्टर्ब होने से जो है वो जैव प्रक्रिया की जो रफ्तार है धीरे धीरे कम हो गई, तो जमीनें अनुर्वरक होने लगी, तो धीरे धीरे जमीनें अनुर्वरक हुई तो इनकी जो मात्रा है रसायन की वो किसान बढ़ाता गया, और धीरे धीरे अब आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि जो है जमीन की उर्वरकता शक्ति है वो खत्म हो सकती है, तो इसके लिए हमको वापिस से उसको जैविक प्रक्रियाओं को अपनाना होगा और जैविक खेती चालू करनी होगी। साथ ही हमको खेती में ये भी सुनिश्चित करना होगा कि अगर किसान है वो जो खाता है, जो खाने के लिए जरूरत है, और उसको चाहे अनाज हो, सब्जियां हो, दालें हो, फल हो, उसकी जितनी जरूरतें हो वो उसके खेती में निरंतर आए, उसको कम से कम उसके घर के लिए उसको बाहर से नहीं लाना पड़े और इसके लिए वो खेती करे, तो इसी को ही उसकी जो खाद्य सुरक्षा है वो करेंगे। अब अनाज में भी देखेंगे कि हमको सिर्फ एक अनाज नहीं, जैसे कि अनाज में भी अलग अलग से, जैसे मान लो कि धीरे धीरे हम देखते हैं तो पहले हमारे यहाँ पे जैसे कि मक्की के साथ ज्वार, बाजरा, है ना, और छोटे अनाज में जो रागी, कूरी, बट्टी, माल, कांगड़ी, कोदरा, छीणा, बहुत सारे हमारे पास अनाज थे। आज अगर हम किसान के वहां जाके देखते हैं तो हमको अनाज के रूप में क्या मिलेगा, या तो मक्की मिलेगी या गेहूं मिलेगा, इसके अलावा दूसरा अनाज उसके पास नहीं है।
0: होता है।
1: एक तरह से धीरे धीरे ये आ जाएगा कि ये सारे जो अनाज है वो विलुप्त तो होते जाएंगे, तो हमको जरूरत है वापिस से पहचानने की कि हमारे अनाज कौन कौन से हैं और उनको हम पुनर्जीवित करें, क्योंकि हर अनाज का अपना अलग गुण है और अलग पौष्टिकता है। इसीलिए पुराने जमाने में जो है 7 दिन का सप्तक होता था और 7 ही दिन बदल बदल के रोटी बनती थी, आज ज्वार की बन गई, कल बाजरे की बन गई, कल कांगड़ी की बनी, परसों मक्की की बनी, फिर गेहूं की बनी, तो उससे मनुष्य कम बीमार पड़ता था, उसको अस्पताल में नहीं जाना पड़ता था, कम खर्चा होता था। तो अभी धीरे धीरे हम देखेंगे कि जैसे देखते हैं तो अस्पताल है, मरीजों से भरे हुए हैं, तो ये पूरा, और आयुर्वेद भी कहता है कि अगर हम हमारे पेट को अगर ठीक कर लेते हैं या पेट का जो खाना है उसको ठीक कर लेते हैं तो हमारी 80% जो बीमारियां हैं वो स्वतः ही ठीक हो जाएगी। और अगर बीमारियां नहीं हो रही है इसका मतलब है कि हम स्वस्थ हैं और हमारी खाद्य प्रणाली है वो सही है। और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से हमको ये भी देखना चाहिए कि हमारा जो बाजार में है वो कितना पैसा जा रहा है। अगर हम सारी चीजें, हम खेती तो कर रहे हैं है ना, लेकिन हम हमारे खाने के लिए अगर हम 60% या 50% चीजें बाजार से लानी पड़ रही है तो हमको हमारी किसानी के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है कि हम क्या खेती कर रहे हैं और हमको क्या करनी चाहिए।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने कार्यक्रम के माध्यम से बताया कि कैसे हमारे किसान भाई बहनों को जैविक खेती के माध्यम से अपनी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की जरूरत है, तो सर आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: धन्यवाद।
0: જેમ કે ભાઈ મોનો આવડે આપણે વેસમાં સોહનજી જોડે તક હતા અને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા થકી ઘણા ખાની વાત બતાડી હે। આશા કરહ કે આ હંગરી વાત આપને ગમી હોંગા, કેમ કે હવે ટાઈમ થઈ ગયો હે આપણે અણસ કાર્યક્રમ થકી સૂટા પડવાનું। તો સૂટા તો પડો પણ સાથે પહેલા હમરી લાઈક ઓર કિતને મોરે પડો સૂટા।

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काड़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा, बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह, नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे, सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा, ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो, खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा, तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे, न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके। शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो, स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे, जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, ने पोषण भी पक्कू। भारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
0: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे बातचीत का विषय है साझी जिम्मेदारी, साझा विकास।
0: बिल्कुल
1: अंजलि, कहते हैं एक अकेला इंसान बदलाव की शुरुआत कर सकता है, लेकिन बदलाव को स्थायी बनाने के लिए पूरे समाज का साथ बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हर नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को भी समझता है, जब हर हाथ विकास की दिशा में आगे बढ़ता है, तभी सच्चे अर्थों में स्वराज और समृद्ध समाज का निर्माण होता है। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो केवल सरकार या किसी संस्था की नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल,
1: विषय है साझी जिम्मेदारी, साझा विकास। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जरूर जानेंगे कि किस तरह से मिलजुल कर किए गए छोटे प्रयास कैसे पूरे गाँव, समाज और देश की तस्वीर को बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर बातें ढेर सारी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी आपने गीत से पहले हमारे श्रोता साथियों को विषय से रूबरू कराया था कि आज हम बातचीत करने वाले हैं साझी जिम्मेदारी साझा विकास। श्रोता साथियों, एक और एक 11 होते हैं यह केवल एक कहावत नहीं है बल्कि समाज निर्माण का मूल मंत्र है।
1: बिल्कुल,
0: जब कोई व्यक्ति अकेले काम करता है तो उसकी क्षमता सीमित होती है, लेकिन जागृति जी, जब वही पूरा समाज एक लक्ष्य के लिए साथ खड़ा होता है तो असंभव लगने वाले कार्य भी संभव हो जाते हैं। यही भावना है साझी जिम्मेदारी साझा विकास का आधार। हम देखते हैं कि विकास केवल सरकार की योजनाओं या बड़े बड़े निर्माण कार्यों का नाम नहीं है। वास्तविक विकास तब होता है जब समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझता है और अपने गांव, शहर, राज्य और देश के विकास में सक्रिय भागीदारी निभाता है।
1: बिल्कुल,
0: स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि ऐसा समाज भी है जहां प्रत्येक नागरिक जिम्मेदार, जागरूक और आत्मनिर्भर और सहयोगी हो।
2: बिल्कुल अंजलि, कहा गया है कि अकेला दीपक एक घर को रोशन कर सकता है, लेकिन हजारों दीपक मिलकर पूरे नगर को प्रकाश से भी भर देते हैं।
1: बिल्कुल,
2: यही बात समाज पर लागू होती है श्रोता साथियों। जब कोई व्यक्ति अकेले बदलाव की शुरुआत करता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, लेकिन जब पूरा समाज एक लक्ष्य को अपना लक्ष्य बना लेता है, जब हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझ लेता है, जब हर हाथ विकास के लिए आगे बढ़ता है, तब परिवर्तन केवल दिखाई नहीं देता बल्कि पीढ़ियों तक महसूस किया जाता है।
1: जी जी,
2: जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं साझी जिम्मेदारी और साझा विकास को लेकर, तो श्रोता साथियों, ये विषय केवल एक विचार नहीं है बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें बताता है अंजलि कि समाज का विकास केवल सरकार, पंचायत या किसी संस्था की जिम्मेदारी नहीं है। विकास तब होता है जब प्रत्येक नागरिक ये महसूस करे कि इस देश, इस गांव, इस समाज और इस प्रकृति के प्रति उसका भी एक दायित्व है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज जब हमारा देश जो है वो विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है, तब ये आवश्यक है कि विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित न रहे बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। इसके लिए सरकार, समाज, पंचायत, युवाओं और महिलाओं और प्रत्येक नागरिक की साझी जिम्मेदारी आवश्यक है।
1: बिल्कुल,
0: जब जिम्मेदारी साझा होगी तभी विकास भी साझा होगा। श्रोता साथियों, साझी जिम्मेदारी का अर्थ है किसी समाज के हर व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि समाज और देश के विकास में उसकी भूमिका क्या है। केवल सरकार से अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है। यदि गाँव में स्वच्छता बनाए रखनी है तो प्रत्येक नागरिक को जागृति जी स्वच्छता का ध्यान रखना होगा। यदि जल संरक्षण करना है तो हर घर को पानी बचाने की आदत अपनानी होगी।
1: बिल्कुल,
0: यदि शिक्षा को बढ़ावा देना है तो प्रत्येक परिवार को बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता देनी होगी। साझी जिम्मेदारी का अर्थ है मैं से हम तक की यात्रा।
1: जी हाँ,
0: जब व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित से ऊपर उठकर सामूहिक हित के बारे में सोचने लगता है तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आता है।
2: जी हाँ अंजलि, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि देश आगे बढ़े, गांव विकसित हो, बेरोजगारी कम हो, शिक्षा बेहतर हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे, पानी की कमी दूर हो और समाज में प्रेम और भाईचारा बना रहे।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन श्रोताओं, क्या केवल इच्छा व्यक्त करने से ये सब संभव हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। इसके लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा अंजलि। यही सच्चे स्वराज की भावना है जहाँ अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ चलते हैं।
1: बिल्कुल
2: श्रोताओं, यदि किसी गाँव की सड़क टूटी हुई हो तो उसकी मरम्मत सरकार करेगी, लेकिन यदि वही सड़क बनने के बाद लोग उस पर कचरा फैलाएंगे, नालियां बंद कर देंगे या उसकी देखभाल न करें, तो क्या वो सड़क लंबे समय तक अच्छी रह पाएगी? बिल्कुल भी नहीं।
1: बिल्कुल,
2: इसका अर्थ है अंजलि कि विकास केवल निर्माण से नहीं होता बल्कि संरक्षण से भी होता है, और संरक्षण तभी संभव है जब समाज जिम्मेदारी निभाएगा।
1: बिल्कुल,
2: इसी प्रकार श्रोता साथियों, हम यही कहना चाह रहे हैं कि विद्यालय तो बन जाते हैं लेकिन बच्चे पढ़ने ही न जाए, अभिभावक शिक्षा को महत्व ही न दे और समाज शिक्षकों का सहयोग ही न करे, तो क्या शिक्षा का उद्देश्य पूरा होगा? कभी भी नहीं होगा। यही कारण है कि विकास तभी सफल होता है जब जिम्मेदारी साझा होती है।
0: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है। ये बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और हमारी बातें चल रही थी आपसे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, जान रहे थे साझी जिम्मेदारी साझा विकास को लेकर। अंजलि, यही अगर साझी जिम्मेदारी को लेकर हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो साझी जिम्मेदारी का अर्थ है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को परिवर्तन का भागीदारी माने। यदि गांव में पानी की कमी है तो केवल सरकार की ओर देखने के बजाय गांव के लोग वर्षा जल संग्रह कर सकते हैं। यदि स्वच्छता की आवश्यकता है तो हर परिवार अपने घर और आसपास सफाई रख सकते हैं। और अगर पर्यावरण की रक्षा करनी है तो हर व्यक्ति कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल भी करे। यदि समाज को नशा मुक्त बनाना है श्रोता साथियों, तो हर परिवार अपने बच्चे को सही संस्कार दे। यही साझी जिम्मेदारी है। जब जिम्मेदारी साझा होती है तो परिणाम भी बेहतर होते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, अक्सर लोग विकास को केवल भवन, सड़क और पुल से जोड़कर देखते हैं, लेकिन वास्तविक विकास उससे कहीं अधिक व्यापक है। विकास तब होगा श्रोता साथियों जब हर बच्चा स्कूल जाएगा, हर महिला सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे, हर किसान को उचित जानकारी और उचित मूल्य मिले, हर युवा को सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मिले, पर्यावरण सुरक्षित रहे और समाज में समानता और सहयोग बना रहे। यदि केवल आर्थिक विकास हो लेकिन सामाजिक असमानता बढ़ जाए तो वह अधूरा विकास कहलाएगा। हम अक्सर जागृति जी अपने अधिकारों की बात करते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। यदि हमें स्वच्छता बनाए रखनी है तो हमें इन सारे विषयों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: यदि हमें भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहिए तो हमें स्वयं ईमानदार बनना होगा। यदि हमें सुरक्षित सड़कें चाहिए तो हमें यातायात नियमों का पालन करना होगा। यदि हमें अच्छा स्वराज चाहिए तो हमें उसके लिए अच्छे कर्तव्य भी करने होंगे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि विकास की शुरुआत परिवार से होती है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर से देखते हैं। यदि परिवार बच्चों को ईमानदारी, सहयोग, अनुशासन और दूसरों का सम्मान करना सिखाए तो वही बच्चे आगे चलकर जिम्मेदार नागरिक बन पाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, एक कहानी के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि एक गांव में वर्षों से पानी की समस्या थी।
1: बिल्कुल।
0: हर गर्मी में कुएं सूख जाते थे और लोग कई किलोमीटर दूर से पानी लाते थे। गाँव वालों ने कई बार शिकायत की लेकिन समस्या पूरी तरह हल नहीं हुई। एक दिन गांव के कुछ युवाओं ने निर्णय लिया कि वे केवल शिकायत नहीं करेंगे बल्कि समाधान भी खोजेंगे।
1: जी जी।
0: उन्होंने पंचायत, महिलाओं, किसान और विद्यालय के बच्चों को साथ जोड़ा। सबने मिलकर अंजलि वर्षा जल संग्रहण के लिए छोटे छोटे गड्ढे बनाए, तालाब की सफाई की, पहाड़ियों पर पौधे लगाए और लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित किया। पहले वर्ष ही बारिश का पानी रुक गया, अगले वर्ष कुएं पहले से अधिक भर गए, तीसरे वर्ष गांव में पानी की समस्या लगभग समाप्त हो गई।
1: जी जी।
0: साथियों, ये चमत्कार नहीं था, ये था साझी जिम्मेदारी का परिणाम और साझा विकास की शुरुआत। जब समाज स्वयं जागता है तो विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है और यही सच्चा स्वराज है, यही आत्मनिर्भर भारत की पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, जब जंगल, जल और जमीन हमारी अमूल्य धरोहर है, इसका संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि प्रत्येक परिवार वर्षा जल संचयन करे, अनावश्यक जल व्यर्थ न बहाए, अधिक से अधिक पौधे लगाए और प्लास्टिक का कम उपयोग करे तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी भी है। इसी के साथ श्रोता साथियों, शिक्षा किसी भी समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे तो अशिक्षा धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी।
0: बिल्कुल।
1: इसी प्रकार स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य जांच के प्रति जागरूकता फैलाना भी जागृति जी समाज की साझा जिम्मेदारी है। स्वस्थ नागरिक ही विकसित राष्ट्र का निर्माण करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि, आज की चर्चा का सार केवल इतना नहीं है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना है, बल्कि ये है श्रोता साथियों कि जब समाज का हर व्यक्ति अपनी छोटी सी जिम्मेदारी को भी ईमानदारी से निभाने लगता है तब पूरे समाज का भविष्य बदलने लगता है।
1: बिल्कुल।
0: किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना, उसकी इमारतें या उसकी आर्थिक संपन्नता भर नहीं होती, उसकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं उसके जागरूक, जिम्मेदार और संवेदनशील नागरिक। जब नागरिक ये सोचने लगते हैं कि काम कोई और क्यों करे, इसकी शुरुआत मैं क्यों नहीं करूं, तभी परिवर्तन का नया अध्याय लिखा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: याद रखिए साथियों, विकास केवल योजनाओं से नहीं बल्कि भागीदारी से आता है। सड़कें सरकार बना सकती है लेकिन उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित रखना हमारी ही जिम्मेदारी है।
1: जी हाँ।
0: विद्यालय बन सकते हैं लेकिन उनमें शिक्षा का वातावरण हम सब मिलकर बनाते हैं। अस्पताल बन सकते हैं लेकिन स्वस्थ समाज तब बनता है जब लोग स्वच्छता, पोषण और जागरूकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: पेड़ लगाए जा सकते हैं लेकिन उन्हें वृक्ष बनाना समाज की जिम्मेदारी होती है। जल स्रोत बनाए जा सकते हैं लेकिन उनमें पानी बचाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। सच्चा स्वराज हमें यही सिखाता है साथियों कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू है। अगर हम केवल अधिकारों की बात करें और कर्तव्य को भूल जाए तो विकास अधूरा रह जाएगा, लेकिन यदि हम अपने कर्तव्य को अपनाएं तो अधिकार अपने आप मजबूत होते चले जाते हैं। आज हम केवल सुनकर ना रह जाएं, बल्कि एक छोटा सा कदम अपने लिए भी अपनाएं कि हम अपने गांव, अपने शहर और अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखने में सहयोग करेंगे। हम पानी की एक एक बूंद का सम्मान करेंगे। हम हर वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेंगे। हम अपने आसपास किसी भी बच्चे को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देंगे। हम महिलाओं का सम्मान करेंगे, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे और बुजुर्गों के अनुभव का आदर करेंगे। हम जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर इंसानियत और भाईचारे की भावना को मजबूत करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: इतिहास गवाह है कि बड़े परिवर्तन कभी अचानक नहीं होते श्रोताओं, वे छोटे छोटे प्रयासों से ही जन्म लेते हैं। एक बूंद से घड़ा भरता अंजलि, एक बीज से विशाल वृक्ष बनता है और एक जिम्मेदार नागरिक से पूरे समाज में बदलाव की शुरुआत होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, सांझी जिम्मेदारी और सांझा विकास एक दूसरे के पूरक हैं।
0: बिल्कुल।
1: जहां जिम्मेदारी केवल कुछ लोगों पर छोड़ दी जाती है वहां विकास अधूरा रह जाता है, लेकिन जहां समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझकर आगे बढ़ता है वहाँ समृद्धि, समानता और आत्मनिर्भरता का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, जब जिम्मेदारी सबकी होती है तभी विकास सबका होता है, और यही सच्चे स्वराज का मार्ग है और यही समृद्ध भारत का आधार है, और यही एक जागरूक, आत्मनिर्भर और संवेदनशील समाज की सबसे बड़ी पहचान है।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेशर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्त रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है तनाव और चिंता का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना ही नहीं है बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना भी होता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में तनाव और चिंता ऐसी समस्याएं बन चुकी हैं जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित कर रही है।
0: बिल्कुल,
1: पहले जहाँ तनाव केवल नौकरी, व्यवसाय और आर्थिक समस्याओं तक सीमित माना जाता था, वहीं मनीषा आज विद्यार्थी, गृहिणियां, किसान, युवा, बुजुर्ग, यहां तक कि बच्चे भी किसी न किसी रूप से तनाव और चिंता का अनुभव कर रहे हैं।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं कि तनाव जीवन का एक सामान्य हिस्सा है। थोड़ी सी मात्रा में तनाव हमें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है, लेकिन मनीषा जब यही तनाव लंबे समय तक बना रहता है और चिंता का रूप ले लेता है तब ये शरीर और मन दोनों को नुकसान पहुंचाने लगता है।
0: जानना
1: चाहेंगे श्रोता साथियों कि लगातार तनाव में रहने से व्यक्ति की कार्य क्षमता घटने लगती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है और कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। तो आज के कार्यक्रम में हम ढेर सारी बातें जानेंगे कि तनाव और चिंता क्या है, इसके बढ़ने के क्या कारण है और शरीर और मन पर इसका प्रभाव कैसे पड़ता है और इनसे बचने के लिए हम कौन कौन से उपायों को अपना सकते हैं। तो बातें हमारी कार्यक्रम में ढेर सारी बनी रहेंगी श्रोता साथियों से, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं तनाव और चिंता का स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, यही अगर बात करें कि तनाव क्या है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि तनाव वह मानसिक और शारीरिक प्रक्रिया है जो किसी कठिन परिस्थिति में चुनौती या दबाव का सामना करते समय उत्पन्न होती है। श्रोता साथियों, हमें जब लगता है कि कोई स्थिति हमारी क्षमता से अधिक कठिन है, तब हमारा शरीर तनाव की अवस्था में चला जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तनाव श्रोता साथियों कई प्रकार से आ सकता है, जैसे कि सकारात्मक तनाव भी होता है। श्रोता साथियों, हमें किसी कार्य को समय पर पूरा करने, परीक्षा की तैयारी करने, प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करने या जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है।
1: बिल्कुल।
0: यही अगर नकारात्मक तनाव की बात करें, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं जब तनाव लगातार बना रहता है और व्यक्ति उसे संभाल नहीं पाता अंजलि जी, तब यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बन जाता है।
1: बिल्कुल। अब यही बात आती है मनीषा चिंता की। तो श्रोता साथियों, चिंता भविष्य में होने वाली किसी भी संभावित समस्या या खतरे को लेकर बहुत ज्यादा डर, घबराहट, बेचैनी हमें महसूस होने लगती है।
0: जी
1: हाँ। हम देखते हैं कि हर व्यक्ति कभी न कभी चिंता तो करता ही है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन चिंता लगातार बनी रहे बिना किसी कारण के, तो हम देखते हैं कि हमें डर महसूस होता है, नींद नहीं आती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सामान्य जीवन प्रभावित होने लगता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये चिंता विकार का संकेत हो सकती है। हम देखते हैं कि तनाव और चिंता के कई कारण होते हैं।
0: जी
1: बहुत सी बार जो व्यक्ति होता है मनीषा, आर्थिक समस्याओं की वजह से भी इन सारी समस्याओं से घिर जाता है। हम देख रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की चिंता लोगों को सता रही है, बहुत सी बार बहुत से कार्यों के लिए लोगों को कर्ज और इधर उधर से पैसे जुटाने पड़ते हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से मानसिक दबाव पड़ता है और इसी के कारण तनाव और चिंता बढ़ने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि अभी के समय में बहुत सारे लोगों के मुंह से ऐसे सुनने को आता है कि कार्यस्थल पर बहुत ज्यादा दबाव है, तो समय पर काम पूरा न करने का दबाव भी बहुत से बार लोगों को परेशान कर देता है।
0: जी हाँ,
1: कार्यभार, नौकरी खोने का डर, प्रतिस्पर्धा, ये सारी चीजें तनाव का कारण बनती है। यही अगर विद्यार्थियों की बात करें, तो बहुत सी बार विद्यार्थियों को अच्छे अंक लाने की अपेक्षा रहती है, प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कैसे करें, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, परिवार की जो उम्मीदें होती हैं, वो भी विद्यार्थियों के लिए तनाव का कारण बन सकती है।
0: बिल्कुल। इसी के साथ अंजलि जी, हम देखते हैं कि पारिवारिक समस्याओं के कारण भी तनाव आ जाता है। घर में विवाद, रिश्तों में मतभेद, जिम्मेदारियों का बोझ और संवाद की कमी मानसिक रूप से तनाव पैदा करती है।
1: बिल्कुल।
0: आजकल हम देखते हैं कि हमारे युवा साथी और जो श्रोता साथी हैं, वो सोशल मीडिया के प्रभाव में भी अंजलि जी तनाव में आ जाते हैं। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कमतर समझना, श्रोता साथियों हर समय ऑनलाइन रहने की आदत और तुलना करने की प्रवृत्ति भी हमारी चिंता को बढ़ा सकती है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही हम देखते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं वो भी बढ़ रही हैं। लंबे समय तक बीमारी, सर दर्द या किसी गंभीर रोग का कारण श्रोता साथियों मानसिक तनाव का कारण बन सकता है।
1: जी जी।
0: आजकल अंजलि जी, हम देखते हैं कि अकेलेपन की समस्या है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। परिवार और मित्रों से दूरी, भावनात्मक सहयोग की कमी, साथ ही श्रोता साथियों सामाजिक अलगाव चिंता को बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा। तो इस तरीके से ये हमने जाना कि तनाव और चिंता लगातार हमारे शरीर में, हमारे अंदर बनी हुई है, तो उसके क्या कारण होते हैं।
0: जी हाँ।
1: यह बात आती है कि इसका शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है। तो श्रोता साथियों, लगातार तनाव शरीर के लगभग हर अंग को प्रभावित करता है।
0: जी हाँ।
1: तनाव के दौरान शरीर में कई सारे ऐसे हार्मोन बढ़ जाते हैं जिससे रक्तचाप बढ़ता है और हृदय तेजी से धड़कता है और लंबे समय में हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। लगातार तनाव से शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे लोगों को बार बार सर्दी, खांसी, संक्रमण और अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: तनाव का सीधा असर पेट, आंतों पर पड़ता है, जैसे कि गैस बनना, अपच, कब्ज, दस्त, भूख कम या अधिक लगना, एसिडिटी जैसी समस्याएं लोगों में होने लगती है। श्रोता साथियों, तनावग्रस्त व्यक्ति को देर तक नींद नहीं आती, रात में बार बार नींद खुलती है, अच्छी नींद न मिलने से शरीर जो है वो अधिक थका हुआ भी महसूस करता है। लगातार मानसिक दबाव, सिर दर्द, माइग्रेन का प्रमुख कारण बन जाता है। और तनाव के कारण मनीषा हम देखते हैं कि गर्दन, कंधे, पीठ और मांसपेशियां लगातार तनावग्रस्त रहती हैं, जिससे दर्द और अकड़न बनी रहती है। श्रोता साथ हाँ। कहना चाहेंगे कि इन सारी चीजों का प्रभाव जो है वो महिलाओं पर भी पड़ता है। हम देखते हैं कि महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता और पुरुषों में हार्मोन संबंधित बदलाव भी लंबे समय तक तनाव के कारण हो सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से तनाव और चिंता से हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव होता है इसको लेकर बातें चली रही हैं, और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, आज हम बात कर रहे हैं तनाव और चिंता को लेकर।
1: जी हाँ।
0: तनाव और चिंता में हमने जाना कि तनाव कैसे होता है, कौन कौन से इसके कारण होते हैं। इसी के साथ चिंता के बारे में भी हमने जाना कि चिंता के क्या कारण है, और यही हम जान पा रहे थे कि तनाव का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
1: जी हाँ।
0: यही अगर बात करें मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव की, तो श्रोता साथियों, तनाव केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी प्रभावित करता है।
1: बिल्कुल।
0: लंबे समय तक तनाव में रहने पर व्यक्ति निराश, उदास और उत्साहीन महसूस करने लगता है। व्यक्ति स्वयं को असफल समझने लगता है और हर कार्य में उसे डर महसूस होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी के साथ मनीषा, हम देखते हैं कि तनावग्रस्त व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भूलने की आदत और पढ़ाई या काम में मन न लगना भी आम बात हो जाती है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, तनाव में व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, जिससे उसके रिश्तों में तनाव भी बढ़ सकता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि बच्चों और विद्यार्थियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि आज के समय में बच्चे तनाव से अछूते नहीं हैं।
0: बिल्कुल।
1: परीक्षा का डर, अधिक होमवर्क, मोबाइल की लत, प्रतियोगिता, माता पिता की अपेक्षाएं, श्रोता साथियों, इन सभी कारणों से बच्चों में चिंता है वो बढ़ सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसका परिणाम पढ़ाई में रुचि कम होना, व्यवहार में बदलाव, गुस्सा, डर, नींद की समस्या और आत्मविश्वास की कमी हमें देखने को मिलती है। यही अगर अंजलि जी बात करें कि महिलाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है,
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि महिलाएं घर और कार्यस्थल दोनों जगह अपनी जिम्मेदारियां निभाती हैं। यदि उन्हें पर्याप्त आराम, सहयोग, मानसिक समर्थन नहीं मिले तो वे तनाव का अधिक अनुभव कर सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसका प्रभाव हम देखते हैं कि उनके अंदर थकान, अनिद्रा, हार्मोनल असंतुलन, चिंता, उच्च रक्तचाप, मानसिक थकावट जैसी श्रोता साथियों समस्या हमें देखने को मिलती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही बात करें बुजुर्गों की, तो श्रोता साथियों, बढ़ती उम्र के साथ अकेलापन, बीमारी, आर्थिक चिंता और परिवार से दूरी के कारण बुजुर्ग जो है वो मानसिक तनाव का सामना करते हैं।
1: जी हाँ।
0: तो इस तरीके से हम ये जान पाए मनीषा कि क्या क्या कारण है और किस तरीके से हमें समस्या देखने को मिलती है अगर हम तनाव और चिंता करते हैं। यहीं इसके बचाव के उपाय की बात करें, तो श्रोता साथियों, हमें नियमित व्यायाम करना है।
1: जी हाँ।
0: यानी कि प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट हमें टहलना होगा, योग करना होगा या हल्का व्यायाम कर सकते हैं। इससे तनाव जो

0: है वो कई हद तक कम रहता है।
1: बिल्कुल,
0: अनुलोम विलोम करना, भ्रामरी करना, गहरी सांस लेना, ये सारे जो अभ्यास हैं, इससे हमारा मन जो है वो शांत बना रहता है। हर दिन हमें 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद निकालनी चाहिए।
1: जी बिल्कुल,
0: हमारा मानसिक स्वास्थ्य जो है वो सही बना रहता है। हरी सब्जियां, फल, दालें, साबुत अनाज, दूध, मेवे और पर्याप्त पानी हमें पीना है, जिससे हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। काम की योजना बनाकर चले, क्योंकि एक साथ बहुत से कार्य हम करने जाते हैं तो हमें तनाव होता ही है। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा जो नियमित हमारे कार्य है उनको समय देंगे तो हम देखेंगे कि काम का जो दबाव हम पर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा।
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ अपनी जो मन की परेशानी है उसे मन में दबा कर न रखें। अपने विश्वसनीय व्यक्ति को या अपने घर परिवार के व्यक्तियों से हमें साझा करने की जरूरत है। इससे हम देखते हैं कि हमारा तनाव, हमारी जो चिंता होती है वो अपने आप थोड़ी सी कम हो जाती है।
1: जी हाँ,
0: हर समय मोबाइल देखने की आदत कम करें। वास्तविक जीवन के रिश्तों को हमें महत्व देने की जरूरत है। संगीत सुनना, पुस्तक पढ़ना, बागवानी करना, चित्रकारी करना या कोई रचनात्मक कार्य करना हमारे मानसिक तनाव को कम कर सकता है। इसलिए श्रोता साथियों, अपनी रुचियों को समय देना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: हर समस्या का समाधान होता है। कठिन समय में धैर्य बनाकर रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें।
1: बिल्कुल,
0: तनाव या चिंता लंबे समय तक बना हुआ है तो सामान्य जीवन को प्रभावित होने या लगातार घबराहट, अनिंद्रा, उदासी महसूस होने पर हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ द्वारा बताए गए जो चीजें हैं उनका भी प्रयोग करने की जरूरत है।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, इस तरीके से हम ये जान पाए कि तनाव से हमें कैसे बचना चाहिए, इसमें समुदाय की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें चाहिए कि वे परिवार को सहयोग करें, विद्यार्थी और बच्चों पर आवश्यक दबाव न डालें, कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनाया जाए, समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए और जरूरतमंद व्यक्ति की बात ध्यान से सुनी जाए और उनका मनोबल भी बढ़ाया जाए, तभी हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि तनाव और चिंता जीवन की सामान्य परिस्थितियों का एक हिस्सा है, लेकिन यदि इन्हें समय पर नियंत्रित न किया जाए तो ये हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: स्वस्थ जीवन का अर्थ केवल शरीर का स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि मन का शांत होना, संतुलित होना और प्रसन्न होना भी है।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों, आइए आज हम ये संकल्प लें कि हम मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही महत्व देंगे जितना कि हम शारीरिक स्वास्थ्य को देते हैं।
0: जी जी,
1: नियमित व्यायाम, योग, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच और परिवार का सहयोग हमें तनाव मुक्त जीवन की ओर ले जा सकता है। याद रखिए श्रोता साथियों, स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर का निवास होता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए अपने मन की देखभाल भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि हमारे शरीर की।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमने ढेर सारी बातों को जाना। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी बिल्कुल,
0: अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही हम हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से बिता लेते हैं। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और उसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की, आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को
1: नमस्कार।

नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम हर बार कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय को लेकर आपसे बातचीत करते हैं, तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। साथियों, कहते हैं ना कि समय और ज्वार कभी किसी का इंतजार नहीं करते। जी हाँ, क्योंकि समय एक ऐसी अनमोल पूंजी है साथियों, जो हर किसी को बराबर ही मिलती है। ना कोई अमीर है तो ज्यादा खरीद सकता है इसे, ना कोई गरीब है जो इसे बचा सकता है। फिर भी श्रोता साथियों, फर्क क्यों पड़ता है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रश्न है। क्यों कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पीछे रह जाते हैं? इसका जवाब है साथियों, समय का सही उपयोग। क्योंकि हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करना जानता है, उसे पता है कि उसे समय का सदुपयोग कैसे करना है, और वो व्यक्ति कभी अपने जीवन में असफल भी नहीं होता। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम इसी महत्वपूर्ण विषय को लेकर श्रोता साथियों आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे कि समय का हमारे जीवन में क्या महत्व है और समय को इतनी महत्वपूर्णता क्यों दी जाती है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं श्रोता साथियों, की शुरुआत में मनोरंजन करना भी जरूरी है, और ये तो हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है। तो पहले उसी दस्तूर को निभाते हुए साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। जैसा कि मैं आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर जुड़ चुकी हूं आप सभी के साथ कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और बातचीत कर रही हूं एक नए विषय को लेकर। जैसा कि साथियों, गीत से पहले विषय में आपको बता चुकी हूं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं समय के सही उपयोग को लेकर। साथियों, कहते हैं ना कि अगर जीवन में सबसे कीमती कुछ चीज है तो वह है हमारा समय। क्योंकि श्रोता साथियों, पैसा अगर खो जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, अगर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे सुधारा जा सकता है साथियों, लेकिन एक बार जो समय निकल गया उसे वापस कभी नहीं पाया जा सकता। और यही हमारे वास्तविक जीवन का सत्य है। क्योंकि श्रोता साथियों, समय की कीमत वही समझता है जिसने इसे खोया हो। आज हम कई बार कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि समय सबके पास बराबर होता है, फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम उसका उपयोग किस तरीके से करते हैं। साथियों, अगर इस बात को एक उदाहरण के माध्यम से समझूं, तो मेरे घर के पास में एक रवि नाम का लड़का रहता है। उसके पापा उसे बार बार कहते हैं कि रवि बेटा ये काम कर ले, रवि बेटा वो काम कर ले, लेकिन रवि जी कहते हैं कि पापा मेरे पास टाइम ही नहीं है। तो श्रोता साथियों, क्या सच में हमारे पास समय की कमी है? नहीं साथियों, समय की कमी नहीं है, कमी तो है सिर्फ प्राथमिकता की। क्योंकि हम अपना समय कहाँ खर्च कर रहे हैं ये हमें ही नहीं पता चलता। तो ऐसे में श्रोता साथियों, हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है कि समय का खर्च हम कहाँ कर रहे हैं। क्यों हम बार बार ऐसा कहते हैं कि हमारे पास समय ही नहीं है? क्योंकि श्रोता साथियों, व्यस्त होना जरूरी नहीं है, सही काम में व्यस्त होना जरूरी होता है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हम घंटों मोबाइल पर समय बिताते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है तो हम कहने लग जाते हैं कि मेरे पास तो इस चीज का समय ही नहीं था, या पापा ये काम आपने करने के लिए बोला था, इस काम को करने के लिए मेरे पास समय ही नहीं बचा। साथियों, हम देखते हैं कि एक छात्र जो है वो हमेशा ये कहता है कि उसके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं है, लेकिन वह रोज घंटों मोबाइल और टीवी पर समय बिताता है। एक दिन उसके शिक्षक उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं था, तो तुमने ये काम कर कैसे लिया? क्या तुम समय का सही उपयोग नहीं कर रहे? साथियों, उस दिन के बाद छात्र ने अपने समय का हिसाब करना शुरू किया कि वो कौन सा समय कहाँ बिता रहा है। धीरे धीरे उसने अपने सही समय का उपयोग करना सीख लिया और कुछ ही समय बाद वह क्लास में श्रोता साथियों अव्वल आने लगा। दोस्तों, यही है समय की असली पहचान। हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास समय का सही उपयोग करने की चाबी है, यानी कि उसे पता है कि वह कैसे समय का सही उपयोग कर सकता है, कहाँ इसका उपयोग कर सकता है, सदुपयोग कैसे कर सकता है, तो वो व्यक्ति श्रोता साथियों अपने जीवन में जरूर सफल होता है। क्योंकि हम वर्तमान में ये समस्या तो बहुत ज्यादा देखते हैं, खास करके हमारे बच्चों में हम ये देखते हैं साथियों, कि अगर हम हमारे बच्चों को कहें कि बेटा ये काम कर लेना, तो वो कहेगा कि पापा मैं कल कर लूंगा। और कल जब हम उससे ये पूछेंगे कि तूने ये काम कर लिया, तो वो बोलेगा नहीं पापा, समय ही नहीं मिला। तो श्रोता साथियों, ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है हम सभी के सामने कि मुझे समय नहीं मिलता, ये हम कह सकते हैं कि समय की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम किस काम को प्राथमिकता दे रहे हैं और किस काम को प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। हमें ये नहीं पता होता है कि किस काम को करने में हमें ज्यादा समय लग रहा है और किस काम को हम कम समय में ही पूरा कर सकते हैं। तो श्रोता साथियों, मेरा आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि

हमें अपने जीवन में समय के सही उपयोग करने को प्राथमिकता देना चाहिए। हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सा काम सही समय पर होना चाहिए और कौन सा काम करने में मुझे बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो मैं उसे बाद में करूं। क्योंकि दोस्तों, जो समय की कद्र करता है, समय उसे ही सफल बना देता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। अगर बात करूं आज के हमारे युवाओं की, तो साथियों, आज के युवाओं के लिए तो समय का सही उपयोग करना इतना जरूरी हो गया है कि बात ही कुछ और हो जाती है। क्योंकि यही समय उनके भविष्य को बदल रहा है। साथियों, अगर अभी भी हमारे युवा साथी समय का सही उपयोग करना नहीं समझेंगे, तो हम कह सकते हैं साथियों कि हम आगे फिर तो समय के उपयोग को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। तो ऐसे में मेरा आपसे कहने का मतलब यही है श्रोता साथियों, कार्यक्रम सपनों की उड़ान के माध्यम से, कि हमें अपने जीवन में समय को प्राथमिकता देनी है, लेकिन उसमें भी सही समय क्या है उसकी भी पहचान करनी है। तो जैसा कि बातें तो कार्यक्रम के माध्यम से मेरी आपसे चली रही है साथियों, ये बातें मैं आगे भी करना चाहूंगी। आगे भी हम जानेंगे श्रोता साथियों कि समय का सही उपयोग करना हम कैसे सीखें, तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा बहुत ही अच्छा विषय आपके साथ चल रहा है और गीत से पहले भी बातचीत हम कर रहे थे समय के सही उपयोग को लेकर। और गीत से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्तमान में हमारे जो युवा साथी हैं, उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है समय के उपयोग को समझने की, समय के महत्व को समझने की, क्योंकि हम देखते हैं कि आज के युवाओं के लिए यही सही समय है जो उनके भविष्य को तय करेगा। साथियों, अगर युवा आज अपने समय को सही दिशा में लगाएंगे दोस्तों, तो उनका कल उज्जवल होगा। लेकिन अगर वे भी समय को यूं ही बर्बाद करते रहेंगे तो हम देखेंगे साथियों कि हमें बाद में पछताना पड़ेगा, क्योंकि आज का किया गया सही उपयोग ही कल की सफलता का आधार बनता है। श्रोता साथियों, तो हम इस तरीके से ये कह सकते हैं कि समय का सही उपयोग करना हर पीढ़ी के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में अगर हम अपने बच्चों को बताते रहें कि समय का सही उपयोग करना क्यों जरूरी है, तो बचपन से ही उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि समय कितना महत्वपूर्ण है। और अगर हम युवा साथियों को समझाएं कि समय कितना महत्वपूर्ण है, तो अगर वो इसी समय भी समझ जाए तो भी हम कह सकते हैं कि वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। क्योंकि श्रोता साथियों, समय का उपयोग करने की कोई उम्र नहीं होती। हर समय का सही उपयोग करना हम हर उम्र में सीख सकते हैं, लेकिन एक बार दोस्तों सही समय निकल गया तो हम उसे वापस नहीं ला सकते। तो जैसा कि मैं आपको बता ही रही हूँ कि हमें समय का सदुपयोग करना है, तो इसी बीच प्रश्न ये आता है कि समय का सही उपयोग करना हमें सीखना कैसे है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम कि समय का सही उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने हर दिन की एक योजना बनानी है। दोस्तों, सबसे पहले उठते ही सुबह आप ये तय करें कि आपको आज पूरे दिन में करना क्या है, यानी कि आप एक शेड्यूल बना लें कि इस समय पर आप ये कार्य करेंगे, उस समय पे आप ये कार्य करेंगे। इससे होगा क्या साथियों, इससे आपका समय भी बचेगा और आप हर काम को सही समय पर कर पाएंगे। दूसरी बात, जरूरी काम को आप प्राथमिकता दें साथियों, क्योंकि आपको करना क्या है कि पहले आपको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है वो कर लेना है। बाद में श्रोता साथियों, छोटे मोटे काम तो लगे रहेंगे। उसके बाद तीसरी बात मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूंगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, आपको मोबाइल और सोशल मीडिया का उपयोग श्रोता साथियों जितना हो सके सीमित मात्रा में करना है। क्योंकि दोस्तों, मोबाइल कहीं नहीं जा रहा है, समय जा रहा है, तो हमें समय का उपयोग करना है, मोबाइल का नहीं। समय का हिसाब भी रखना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दिन में समय कहाँ जा रहा है, किस काम में जा रहा है, इसका हिसाब होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर अपना समय व्यर्थ जाने दे रहे हैं और कहाँ पे आप सही समय का उपयोग कर रहे हैं। तो दोस्तों, समय को नहीं जाने दें, खुद मैनेज करना सीखिए कि किस तरीके से आप समय का सदुपयोग करेंगे, समय को मैनेज करेंगे। साथियों, आप खुद ही सोचिए कि कितनी बार हम ये कहते हैं कि कल से शुरू कर लेंगे इस काम को, कितनी बार हमने अपने सपनों को भी टाल दिया श्रोता साथियों। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि कल कभी नहीं आता, जो आता है वो सिर्फ आज ही आता है। जो आज को खो देता है साथियों, वो कल को भी खो देता है। इसलिए कार्यक्रम के माध्यम से अंत में आपसे यही कहना चाहेंगे साथियों कि आज हमने जैसा कि जाना कि समय जीवन की सबसे कीमती संपत्ति है। अगर आप इसका सही उपयोग करेंगे दोस्तों, तो हमें अपने सपनों को साकार करने का समय भी मिल जाएगा। इसलिए साथियों, याद रखिए कि समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। हर मिनट की कीमत आपको समझनी होगी, क्योंकि यही मिनट मिलकर जीवन बनाते हैं। श्रोता साथियों, आज से ही अपने समय को पहचानिए। तो आज से ही श्रोता साथियों, अपने सही समय को पहचानिए, उसे सही दिशा में लगाइए और अपने सपनों को सच बनाइए। इन्हीं आशाओं के साथ दोस्तों, अब मैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, क्योंकि बातें जैसा कि कार्यक्रम में ढेर सारी हो चुकी है, तो विदा मैं जरूर लूंगी। लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप सभी बने रहिएगा मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ कार्यक्रम में।

के महत्व को लेकर जो भी मेरी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। और उन्हीं बातों से प्रेरणा लेकर श्रोता साथियों, आप भी अपने जीवन में समय के महत्व को जरूर समझेंगे। तो जैसा कि बातें तो पूरी हो चुकी है, समय भी श्रोता साथियों अब हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। उम्मीद करती हूँ साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, ये हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए प्रेरणादायी विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले सालों की फसलों का गुड़ लाए थे। आंख खुली तो देखा घर में कोई नहीं था, हाथ लगाकर देखा तो तंदूर अभी तक बुझा नहीं था और होंठों पर मीठे गुड़ का जायका अब तक चिपक रहा था। ख्वाब था शायद, ख्वाब ही होगा। सरहद पर कल रात सुना है चली थी गोली, सरहद पर कल रात सुना है कुछ ख्वाबों का खून।